0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
1: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

0: प्यार बिना जीवन है टोटल फ्लॉप। पुण्य पाप के चक्कर में कोई पढ़ के सके ना बच।
1: क्यों रे चले झूठ कहा?
2: नहीं गुरुजी सच।
0: थैंक यू वेरी मच। मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत डालो, मन को पिंजरे में न डालो।

0: Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
2: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

ओ मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा ना रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवे ता बात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए।

जाने मन कोई। मन्ने सुत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहावे।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी होसी।

हत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बो लख होवें, लख होवें लखवीस, लख लख

जोर ना जीवन मरण है जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवार।

0: Virgin Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners, Lyco Radio Network.
1: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: Dosti, masti and emotions ni ek anokhi story.
3: Samad ek kaam kar medical de le ane nakta chahiye.
4: Nakta chahiye etle?
2: Soul Sutra Productions presents Mitrata, friendship ni love story. Produced by Parthiv Gohil and Mansi Parekh. Directed by Onil Karnik.
5: Tu gando che? Aagar maro break mare to paachar maro break mare se.
6: Kari mari dosti.
2: Starring Viraj Khilani, Deep Vaitya, Vishal Parekh and Vishwa Joshi. Mitrata in cinemas now. UK release details mate Instagram par follow karo Bakrania Media.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
8: विंटर्स कमिंग एंड मेरा बॉयलर pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
9: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
10: Ma Krupa Foundation UK taraf thi Srimad Bhagwat Saptah Gnan Yagna nu open invitation 29 September thi 5 October sudhi roj bapore 3 vagya thi sanje 6 vagya sudhi. वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा. वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे, फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 2, साउथ राइसलिप, HA40JS. रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ. बधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777

0: Breakfast with Dee Prancha.
1: Oh, how relaxing was that yoga session? I feel so free.
2: Speak for yourself. I can never let go. Bladder leaks.
1: I know, right? I'm so done compromising. I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
2: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
1: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
2: Let's just say I found my flow.
1: Always discreet. Live with no compromise.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 hour line.
6: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
7: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में
6: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
7: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में. यूके में पहली बार
6: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन.
7: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा.
6: शाम 7 बजे डोर्स ओपन.
7: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 0208-426-0678.
8: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11, 11.
9: Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
10: Danu 11, 11. Danu Properties.
11: हमारी रक्षक है वो.
12: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
13: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है? कौन कर रहा है ये?
12: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
14: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स कैफेज केटरर्स फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज. ऑर्डर योर फ्री Herald catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
15: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
16: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर.
15: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
17: माय फ्रेंड दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है.
18: India ke top 1% hosted by Anil Kapoor every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
19: Your brain now, play the game now.
0: Like a radio network, proud hospitality partner, Ragasan.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: One performer,
2: countless personalities,
1: a whole universe of entertainment.
2: Sunil Grover live UK tour 2026.
1: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
0: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
4: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
5: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
4: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
5: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
4: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
6: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
7: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
8: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
9: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
8: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
9: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
8: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
9: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: sonatours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
11: The Cycle of Love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true-life adventure.
12: I left behind everything I knew.
11: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
12: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
11: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
13: Breakfast with Deep Roger.

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: हो जाए।

0: कितने आदमी थे?
1: सरदार, दो आदमी थे।
0: दो आदमी।
2: Okay, I'm going to stop it there because it's going to get a bit angry there. But how many people were there now? What was the name of that film? Was it A, Sholle? Was it B, Gubby Gubby? Or was it C, Suhaag? You know the numbers, but just in case you don't, let me know.
3: WhatsApp message Like a Gold now on 0744 23 23 23.
2: Come on, come on. And don't forget, guys, please give me your names too.
4: ये है लाइका गोल्ड तुम देना साथ में।
5: दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा एवरी डे एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से 1 से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से। स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर 22 Palmerston Road हैरो HA37RR। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678।
8: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी।
9: सांबड़ एक काम कर मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए।
10: नाकता चाहिए એટલે
8: सोल सूत्र प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक।
11: तू गांडो छे आगे वालों ब्रेक मारे तो पाछळ वालों ब्रेक मारे छे यार
12: तारी मारी दोस्ती
8: पे। स्टारिंग विराज खिलानी दीप वैद्य विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी। मित्रता इन सिनेमाज नाउ। यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया।

Japan tour now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323. 0730-00-9-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730-00-9-8823. Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Breakfast with Deep Raja. Leica Gold, traffic and travel.
2: I'm Gary King. Usual delays building on the M4 and the Heathrow Spur Road heading southbound into the terminal buildings. Do expect delays around Ealing today. The Ealing half marathon in place. Road closures remain until around 1 o'clock on the roads between Brent River Park through the town and towards Walpole Park. Stamford Hill, Upper Clapton Road southbound on the A107. Partly blocked. Delays there following an accident just near the Moresby Road. The M25 anti-clockwise all at a stand at the moment after an accident from junction 24 at Potters Bar to 23 at the A1M. And that's the latest. Traffic and travel.
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
5: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल protected.
5: Visit travelhubworld.com.
6: London, hello, garbe gumwa. Shri 27 gam patidar samaj Europe sathe mano Navratri Bharatna live band sathe. 10 thi 20 October Sanje 7:30 thi at 27 Patidar Center Wembley. Adult tickets £10. 16, 17 ane 18 October e £15. 5 thi 10 varshna baalako ne £5. Under 5s free. 11 raat no season pass £100. Radio partner Leica Radio Network. 27 गाम पाटीदार समाज ना गरबा इटले बेस्टम बेस्ट
7: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
8: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में
7: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
8: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में यूके में पहली बार
7: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन
8: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा
7: शाम 7 बजे डोर्स ओपन
8: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 02084260678
9: तेरा क्या होगा रे कालिया
10: सरदार मैंने पूनम के लड्डू खाए हैं
9: सारे लड्डू खा गया एक नहीं छोड़ा क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक शादी हो या त्योहार लोग कहते हैं लड्डू हो तो बस पूनम के हो
11: जब पूनम की स्वीट्स मंगवाली तो हो गई अपनी हैप्पी दिवाली
12: पूनम स्वीट सेंटर 86 वेस्टर्न रोड साउथ हॉल कॉल 02085744934 डिलीवरी भी अवेलेबल है उबर ईट्स पर
13: आर यू सिटिंग ऑन अ मॉर्गेज एंड गेटिंग नथिंग बैक What if your remortgage paid you?
14: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
13: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
14: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
13: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
15: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
16: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
17: Dubai is the place. 11,
16: 11. Call the Danube Properties London office today on 02 03 963-5757 and book your meeting.
18: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
19: हमारी रक्षक है वो
3: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
1: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है कौन कर रहा है
3: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
2: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
9: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check.
19: biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
20: SonaTours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Call Sona Tours now on 0208-951-0111.
21: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Deep Raja, making you feel good every weekend breakfast.

ये है लाइका गोल्ड। ये रिश्ता क्या कहलाता है। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ये रिश्ता क्या कहलाता है। एवरीडे एट 7 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
2: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
4: गारंटेड.
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
4: फोन 02085748410.
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
6: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है. बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके. जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट. एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम. टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
7: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
9: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
10: Breakfast with Deep Roger.

What a romantic track, isn't it? This is Laika. And yes, itne khoobsurat se gaane. Reviving a lot of your old memories. Nahi, kitni baatein jo hain aapse karni hai. And it's Sunday fun day after all. आप लोग बताइए क्या हो रहा है. आई नो संडे की सुबह सब लोग थोड़ा सा भी पीपल टेक इट इजी. यू थिंक अबाउट के चलो संडे है, लेट्स एंजॉय संडे, हैव सम फन, हैव सम इंटरेस्टिंग फूड. और यू नो देयर आर सो मेनी पीपल हु मस्ट बी

0: thinking about, let's have one more cup of chai. Yeah, not cup of coffee, but cup of chai. And you know what I was thinking about? Let me just ask you, because there's a lot of debates going on right now about this. I'm not going to do a debate on tea versus coffee. मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग हैं ना, उनको मसाला चाय बहुत पसंद है. Forget about it. मेरा question सिर्फ ये है, and that's my personal question in fact, कि आपको कौन सी चाय पसंद है? आपको वो डब्बे वाली where you add all the masalas, ginger, cloves and अदरक के साथ, you know, you add cinnamon and सौंफ, अजवाइन. Do you like that dabba wali, ubalti hui chai? Itni ubal rahi hoti hai ki jab tak wo uska ek ring nahi banta tab tak log chai piye, tab tak wo band nahi hoti gas. Or do you simple like the kettle tea, which is simple one, brew it, add a dash of milk, maybe sugar if you want, but jaldi taiyar ho jati hai. Mere liye wo quick one asaan hoti hai, but kahi log kehte ki taste uska bahut badhiya hota hai jab aap masale wali chai ghar pe tasalli se pijiye. So let me ask you, आपकी फेवरेट चाय कौन सी है? वो डब्बे वाली चाय, एंड आई एक्चुअली वांट टू कॉल इट एज अ डब्बे वाली चाय, बिकॉज इट्स एक्चुअली डब्बे वाली चाय. वो एक तो डब्बा, उसके बाद जो धोना होता है, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज इन माय लाइफ करंटली. दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज, एंड स्पेशली जब आपकी फैमिलीज हों और उनको वही चाय पसंद आती है, क्योंकि उस चाय का एक अलग ही फ्लेवर होता है. आई नो इट इज़ रियली गुड, बट लेट मी यू नो आस्क यू गाइज, आपको कौन सी वाली चाय पसंद है? इट्स द सेम थिंग इन इंग्लिश टी वॉश वे.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 126.35 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or by simply using SBI Yono mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like a gold.
3: This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी.
5: सांभर एक काम कर, मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए.
6: नाकता चाहिए એટલે
4: सोल सूत्र प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी, प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख, डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक.
7: तू गांडो छे, आगे वालों ब्रेक मारे तो पाछड़ वालों ब्रेक मारे छे यार. तारी मारी
4: दोस्ती पिघल. स्टारिंग विराज खिलानी, दीप वैद्य, विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी. मित्रता इन सिनेमाज नाउ. यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया.
8: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
9: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइस्लिप HA40JS रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-22-287-509.
11: What food make dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
12: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
11: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
12: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923-227274. Book your table today.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: This is Leica.
2: हेलो जी, दिस इज शीना एंड यस, वी वर टॉकिंग अबाउट द डब्बे वाली चाय, द स्टोव वाली चाय और स्पॉइल्ड द बॉइल्ड चाय और सिंपली केटल चाय, व्हिच इज योर फेवरेट वन. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर मैसेजिंग मी एंड आई नो द इंक्लिनेशन विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स दैट मसाला चाय. डब्बा निकालेंगे सब, चाय बनाएंगे. मैं रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ, हर एक की डिफरेंट रेसिपी होती है. और प्लीज़ मुझे मत बोलिएगा, आई कैन मेक रियली गुड स्टफ. खाना वाना सब बनाना आता है, लेकिन एक चाय है वो कभी नहीं मुझसे अच्छी बनती. एवरी टाइम आई ट्राई मेकिंग, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है. और जब कोई घर पे आता है ना, तो फिर ये कहा जाता है कि हाँ बेटा चाय बना दो. एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट देम, इन्होंने तो रबी रखा, अगर ये चाय पी ले मेरे हाथ की, और उसके बाद डेफिनेटली कभी नहीं बोलेंगे कि शीना हमें चाय पीनी है. सो बैड एट मेकिंग चाय. एवरी टाइम आई ट्राई, इट्स नॉट दैट आई एम नेवर ट्राइड, स्पेशली दैट डब्बे वाली. केटल वाली में तो सिर्फ पानी गर्म करना है और टी बैग डालना, और उसका कोई फ्लेवर किसी को भी कभी भी नहीं आता. मुझे खुद को नहीं आता, तो किसी को तो क्या आएगा. बट दैट मसाला चाय ऑलवेज ट्राई. मैं वो अदरक कूट के, इलायची कूट के, यू नो, पुट सम लौंग. बट आई ऑलवेज, आई डोंट नो व्हाई, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर वर्सेस मिल्क, और इट माइट बी द बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करी, कच्ची चाय बना देती. आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ इट. एंड आई एम रियली रियली लाइक, यू नो, एज दे से इंडिया में तो किसी को इम्प्रेस करना है, अच्छी चाय पिला दो. वो ना हो पाया मुझसे, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट. कुछ लोग होते हैं उनके हाथ में एक चाय बनाने का मैजिक होता है. आई थिंक वो मैजिक कहीं ना कहीं मेरे हाथ में नहीं है. अगर आपके पास कुछ ऐसे टिप है जो मुझे ऑफलाइन दे सकते हैं, तो डेफिनेटली दे दीजिएगा. बट येस, अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड मसाला चाय, एंड लेटर आई एम गोना टेल यू अबाउट व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ मसाला चाय वर्सेस केटल टी, एंड देयर आर सम कॉन्स एज़ वेल, वी गोना टॉक अबाउट दैट. But right now, let's move on to Kishore Kumar with this upcoming beautiful track.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Leica Gold.

0: What a beautiful track from the movie Yaarana. On the vocals of Kishore Kumar, you are listening to Sheena on Like a Gold.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Start

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: मैं हूँ अनीसा नासिर, लाइका गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में। मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है। बिग शो सुनना भूलिएगा मत।

0: What a beautiful track, isn't it? मेरे हाथों में तो एक चाय का कप कोई पिला दे, that'll be more than enough, right? And yes, the battle will always go. And there's no solution to it. Dabbe wali cha, ya followed by the kettle wali chai. And you know the interesting answers. Lot of people have started, sending me pictures. कि ऐसी दिखती है हमारी बनाई हुई चाय. और आप मुझे फील करवाइए कि basically कि कितनी difficult है जो चाय बनानी है. But to be honest, there are people who are actually messaging me कि हमें भी चाय बनानी नहीं आती और हम डरते हैं कब जब कोई कहता है कि हमें प्लीज चाय बना के पिला दो. We just so scared. We just take a deep breathing and we just say that कि आप प्लीज़ अपने आप ही बना लो, कुछ और पी लो. And that's actually क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा watery बन जाती है, कई बार बिल्कुल इतना दूध जल जाता है. So I think बहुत सारे धुरंधर होंगे यहाँ जो बहुत अच्छी चाय बना पाते होंगे. So kudos to them. But there's an interesting thing जो कि मुझे किसी ने मैसेज करके interestingly ये पूछने की कोशिश की है कि आप चाय के बारे में बात कर रही हैं, क्या मोदी जी की रिलेटिव है? नहीं जी, मैं कोई मोदी जी की रिलेटिव नहीं, अगर मैं चाय के बारे में बात कर रही हूँ. सो थैंक यू शेखर. नहीं, कहाँ से कहाँ आप लोगों कड़ी जोड़ लेते हैं, बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर दैट एंगेजमेंट. बट जस्ट टू गिव यू अ समरी ऑफ जो लोग सोचते हैं ना कि बॉयल्ड इंडियन चाय पीना मतलब आई नो देयर इज अ मसाले का फ्लेवर दैट बेसिकली गिव्स अरोमा एंड इट्स गुड फॉर द बॉडी, बट अल्टीमेटली जो बॉयल्ड इंडियन चाय है ना उसे एसिडिक होती है और उससे काफ़ी ज़्यादा एसिड भी बनता है. एंड नन अदर देन केटल टी से भी होता है क्योंकि वो तो प्योर ब्लैक टी जो है आप बेसिकली बॉइल कर रहे हैं, तो इट्स एसिड लिक्विड. बट पीपल आउट देयर, देसी विल ऑलवेज बी देसी, राइट? एम आई राइट और एम आई राइट? दे लव देयर चाय की प्याली. एंड प्लीज़ हैव इट विद योर ओन घर वाली, नो बाहर वाली. सो प्लीज़ हैव द मसाला चाय. एंड इफ देयर इज एनीवन हु रियली वांट्स टू शेयर द रेसिपी, यू आर मोर देन वेलकम.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Looking at currency update today, £1 is going to fetch you 126.94 Indian rupees, 86.04 Afghani, 367.59 Pakistani rupee, 163.18 Bangladeshi taka, 437.52 Sri Lankan rupee, 171.75 Kenyan shilling and 1.32 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold in pounds is trading at £104.10 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: Like a gold.
1: 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. This is the Leica Radio Network.
3: ये है Leica Gold. 10:35 AM.
4: क्योंकि सांस भी कभी.
5: This part of the show is sponsored by क्योंकि सांस भी कभी बहुत थी. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me or you.
8: Southall Travel, at all protected.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
2: वी आर फाइनली गोइंग होम फॉर द वेडिंग.
3: No, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
2: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
3: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
2: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
3: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
2: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
4: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works. At simzy.com. Terms apply.
5: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11.
0: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place.
6: 11, 11.
0: Call the Danube Properties London office today on 02 03 96.

0: हर जिंदगी वहाँ सेक्टर माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
1: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
4: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
5: I left behind everything I knew.
4: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
5: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
4: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
6: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
7: फील गुड क्लासिक्स नॉन स्टॉप विद रितु शर्मा। दिस इज लाइका गोल्ड।

दिस इज फ्रॉम द मूवी हत्या एंड प्रायर टू दैट इट वॉज आईना का खूबसूरत सा गाना गोरिया रे गोरिया ओनली ऑन लाइक अ गर्ल दिस इज शीना. And it is a special day today. क्यों? क्योंकि आप मिल सकते हैं संजय कपूर से. हाँ जी सर.

0: ही सुना आपने, एंड दैट टुडे एट मुंबई सैंडविच स्टेशन लेस्टर में यू कैन मीट द हार्टथ्रोब. वी ऑल लव हिम राइट, दिलबर दिलबर एट मुंबई सैंडविच स्टेशन बेलग्रेव रोड लेस्टर टुडे एट 3 PM. और फिर उनको आप मिल सकते हैं बॉलीवुड लेजेंड्स ब्रॉट यू बाय जेज एंटरटेनमेंट एट डी मॉन्टफोर्ट हॉल लेस्टर में, और इनके साथ आफ्ताब शिव दसानी, अमंतिका एंड मयूरी पी होंगी. तो डेफिनेटली अगर अभी तक आपने टिकटें नहीं खरीदी हैं, जस्ट चेक आउट एंड यू कैन बाय द टिकट्स एज वेल. बट यस फॉर श्योर, इफ यू वांट टू मीट संजय कपूर टुडे तो प्लीज प्लीज प्लीज जाइए, दौड़िए एंड यस सैंडविच स्टेशन पे लेस्टर पे टुडे एट 3 PM एंड यू कैन मीट संजय कपूर एंड लेट मी नो कैसी थी मीटिंग.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 126.95 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or by simply using Yono SBI mobile app. Terms and conditions to apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: And of course, aaj hai special, Sunday special, jodi special. Aur Bollywood mein kuch jodiyan aisi hoti hain jinke naam ke saath ek pura daur yaad aa jata hai. एक तरफ बॉलीवुड के हैंडसम चार्मिंग और लार्जर देन लाइफ हीरो, यू नो हुम आई एम टॉकिंग अबाउट, पंजाब द मुंडा धर्मेंद्र, और दूसरी तरफ ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी. क्या खूबसूरत सा दौर था. दोनों पहली बार 1970 में मिले थे तू हसी में जवां में साथ आए, और फिर पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री ने जादू तो बस जैसे बिखेर दिया. इट वॉज ऑल अबाउट मैजिक अबाउट दैट केमिस्ट्री. सीता और गीता, शोले, ड्रीम गर्ल, जुगनू, राजा जानी एंड यू नो मेनी मेनी मोर फिल्म्स, ये दोनों साथ नजर आए. लेकिन इनकी कहानी सिर्फ रियल लाइफ तक नहीं थी, जंप डाउन टू द रियल लाइफ एज वेल. और इनकी केमिस्ट्री भी सिर्फ रियल लाइफ तक नहीं थी, राइट? और कहाँ से वो शुरू हुई, स्क्रीन पे एंड दे लैंड अप इन गेटिंग मैरिड. और उनकी ये जो रियल लाइफ रिलेशनशिप में बदली और दोनों ने 1980 में शादी कर ली, दैट वॉज लाइक द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ देयर जर्नी. तो आज की जोड़ी नंबर वन में याद करते हैं एक ऐसी जोड़ी को जिनकी केमिस्ट्री में रोमांस भी था, मस्ती भी थी और एक अलग ही स्टार क्वालिटी भी. आई एम टॉकिंग अबाउट धर्मेंद्र और हेमा मालिनी. आई एम गोना प्ले फ्यू ट्रैक्स, यू ऑल्सो लेट मी नो विच इज योर फेवरेट ट्रैक. मे बी आज शायद वो प्ले हो जाए. But thinking about this couple always makes me feel love does exist, right? And they look so good on the screen and off screen as well, isn't it? So let's hear it out. Dharmender aur Hema Malini ke bare mein aapka kya kehna hai? Kuch aisi interesting baatein to main definitely karungi. Stay tuned. This is Sheena on Like a Gold.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Like a Gold.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: बोले तुझे क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
2: गुरु गुरु,
4: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
5: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
6: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
7: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
8: शीघ्र शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
9: टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
10: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: Yes, dream girl. There can only be one dream girl. और वो है हेमा मालिनी. और आज हम सेलिब्रेट करें जोड़ी नंबर वन, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी. And this is definitely one of the most romantic गाना. She became a fashion influencer इस गाने की वजह से. Everyone was trying to follow in 1970s. वो साड़ीज, फ्लोइंग साड़ीज, वो डेलिकेट ज्वेलरी. And she got the lifetime title, dream girl. जो कोई नहीं ले पाया ना ले सकेगा.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Laika.
0: जहाँ ड्रीम गर्ल बहुत ही एलिगेंट, स्वीट, सोबर और फैशनिस्टा थी, वहीं धर्मेंद्र जी बिल्कुल ही अपने ही तरीके में पंजाबी स्टाइल, नॉन डांसर. एंड ही वॉज नेवर नोन फॉर हिज डांसिंग. बट एक गाना था जहाँ उन्होंने अपनी ही क्रियोग्राफी खुद ही कर दी थी, और वो था मैं जट यमला पगला दीवाना. आई एम गोना प्ले दैट नेक्स्ट. यू नो व्हाई, इट्स सच एन एनर्जेटिक गाना. एंड यू नो इट्स सच अ फ्री स्टाइल गाना, कैफ्री गाना. जब भी आप उस गाने को सुनते हैं ना, आपको एक अलग ही डांसिंग की वाइब आ जाती है. और उनका वो सिग्नेचर स्टाइल आज तक, एंड स्पेशली यू नो द ओनली पर्सन हु कैन डू इट इज सलमान खान. कभी आप ध्यान से देखिए, वो हमेशा वही स्टेप फॉलो करता है. एंड नो वन कैन डू इट. आई थिंक सेकेंड वन वुड बी कृष्णा, वेन एवर ही ट्राइज टू पोर्ट्रे एज धर्मेंद्र जी. और जो बेसिकली कीकू है वो सनी देओल बनते हैं, तो वो भी काफ़ी टाइप से यू नो सिमिलैरिटी से कर लेते हैं. पर बहुत ही खूबसूरत सा गाना है फ्रॉम द मूवी प्रतिज्ञा. दैट आई एम वी आर गोना प्ले नेक्स्ट. बट जोड़ी के बारे में तो जितना बोलें उतना ही कम है. एकदम परफेक्ट जोड़ी कह सकते हैं उनको आप. लाइफ में चैलेंजेस भी बहुत है, बट चैलेंजेस के बाद प्यार की हमेशा जीत होती है, अगर मैं बॉलीवुड स्टाइल में कुछ बोलने की कोशिश करूँ तो. एंड इट इज ऑलवेज लाइक दैट, इजंट इट? एंड दैट इज व्हाट धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्यारी सी जोड़ी. So let's play this track.
1: ये है Laika Gold.
3: Laika Gold.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: हाँ जी, और अब टाइम है आप लोगों को बताने का कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1% दैट्स होस्टेड बाय अनिल कपूर. इट्स क्वाइट अ नाइस शो. आई यू नो वॉच्ड इट एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार. डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉटस्टार ऐप अभी के अभी करिए. जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप टू.
2: दिस इज रितु शर्मा.
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo. Only Like a Gold.

0: असली केमिस्ट्री तो इस मूवी में थी. यस, बेसिकली बहुत ही ड्रामेटिक फाइनल एक पिक्चर थी शोले, जिनमें उनकी केमिस्ट्री को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया गया था. एंड दैट वाज बेसिकली शोले, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी. वाह भाई क्या बात, राइट? यू नो, एंड कुछ फनी फैक्ट्स, यू नो, व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर इट आई फाउंड इट. हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र जी को पोएट एट हार्ट कहा था और बताया था कि उनके पास हर मौके के लिए एक ना एक शेर होता था, नॉट शेर, और वो शेर हमेशा कहीं ना कहीं वो चिपका देते थे. और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि शूटिंग के दौरान उनके फादर उन दोनों को अकेले वक्त ना मिले इसके लिए ना कार में उनके साथ आके बैठ जाया करते थे. और धर्मेंद्र जी भी हड पंजाबी भी उनके पास वाली सीट लेने की कोशिश करते थे और वहीं साइड में आके बैठ जाते थे. तो ऑफकोर्स प्यार तो दोनों तरफ से था. कहते हैं प्यार को छुपाना मुश्किल होता है, और हेमा जी के फादर शायद ये बात बहुत पहले ही समझ गए थे. दैट्स व्हाई वो कोशिश कर रहे थे कि यू नो कि थोड़ा सेपरेट रख सके. बस प्यार किस बंदिशों में बंधा रहा है. सो दिस इज शीना, होप यू एंजॉयड दिस जोड़ी स्पेशल. एंड यस, बिकॉज द आइकॉनिक जोड़ी इज डेफिनेटली मेक अस फील, एंड वील बी ब्रिंगिंग सम इंटरेस्टिंग जोड़ीज एज वेल, क्योंकि जोड़ियों का साथ तो हमेशा बॉलीवुड में रहा है. सिर्फ कपल जोड़ी नहीं है, और भी बहुत सारी जोड़ी है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. दिस इज शीना.
1: Like extra podcast updates.
0: एंड नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द पॉडकास्ट. हाँ जी, हमारा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 35, जो कि बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज उसमें हमारे सीईओ राज बदन टॉक्स टू रूबी रजा एंड डोनी ब्रास्को अबाउट स्टेपिंग इनटू द रोल ऑफ अ सीईओ ऑन वन ऑफ द ब्रिटिश लार्जेस्ट एशियन रेडियो नेटवर्क्स, द लाइका रेडियो नेटवर्क, एंड इज जर्नी बिहाइंड द टाइटल. ऐसे टाइटल के लिए बहुत मुश्किल होता है एक सीईओ के लिए, यू नो, करना. एंड ही इज डन फैबुलस जॉब इन दिस स्पेशल 5 years. Showcases Raj Bandhan talks about the nerves, the responsibilities that came with the role of CEO, and the success story definitely, and the changes he wanted to bring to the organization. And he's got tons of ideas, and we are just keen to see what he's bringing up next. But aap log zarur jaiye aur ye suniye podcast Laika Extra Podcast, available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple or other major streaming platform. And aapko kahin aur jana nahi hai, bas in platform pe jana hai aur suniye podcast
1: Laika Extra. Is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Laika Gold.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
5: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250 376.

0: डेफिनेटली ये लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे थे बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ कि भी कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरे जैसा यार मिला नॉन स्टॉप दे सेइंग दैट सो डेफिनेटली इनके कर्म तो डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे कि ऐसा जो इन्हें यार मिला. आजकल तो लोग बेसिकली ये सो पिछले जन्म क्या इस जन्म में भी निभा लें वो भी बहुत बड़ी बात है. दिस वॉज जस्ट ऑन अ लाइट नोट बट डेफिनेटली दैट्स दिस इज ऑल अबाउट राइट कि बॉलीवुड सॉन्ग्स अगर हम देखें 60s 70s में यू नो दे वॉज सो मच ऑफ लव कंसर्न. आजकल सब अपनी मर्जी में अपनी धुन में चलते हैं कि पहली बार अगर एक बार नहीं प्यार होता है कई बार फिर पता नहीं क्या क्या क्या और लॉजिक निकाल देते हैं. बट वो यही कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं देयर इज ऑलवेज अ कर्मा टू इट तो पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होता है. दैट्स व्हाई वी कीप ऑन सेटलिंग अकाउंट्स राइट एंड दैट्स हाउ द लाइफ मूव्स ऑन. आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग किस चीज़ को मानिए या नहीं मानिए बट दिस इज जस्ट प्रॉबली विद द गाना आई डेफिनेटली से कि अगर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होगे ना तभी अच्छा यार मिलेगा. अगर भैया इस जन्म में अच्छे कुछ कर्म कर लो शायद अगला जन्म थोड़ा सा तर जाए और अच्छा हो जाए.
1: ये है लाइक अ गोल्ड 10:35 AM.
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Hi, this is Sheena on Like a Gold. और मैंने भी एक बहुत ही प्यारा सा सपना देखा है कि आप सब लोग एक स्माइल दे दीजिए मुझे बस. That's all I need. एंड वो वर्चुअल स्माइल मेरे पास आ रही है एंड आई एम गिविंग यू माय ऑन एयर. कीप ऑन स्माइलिंग बी हैप्पी एंजॉय द संडे विद दिस ब्यूटीफुल गाना फ्रॉम लव स्टोरी. देखो मैंने देखा एक सपना फूलों के शहर में वो घर अपना. आई विल हैव दैट सून.

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: Looking at the currency update today, £1 is going to fetch you 126.95 Indian rupee, 367.52 Pakistani rupee, 163.48 Bangladeshi taka, 437.44 Sri Lankan rupee and 171.71 Kenyan shilling and 1.32 US dollars.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LEICA Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: Golden pounds is trading at £104.10 per gram.
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: Leica Gold.
2: This is Leica.
3: And it's time for me to say bye-bye. But just before saying bye-bye, कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर आपको बता के जाऊँगी. A beautiful thought. And thank you, Vijay, for sending this beautiful message. And I'm going to just read that out in my own style. But सबसे पहले just wanted to say thank you. I had really good fun both Saturday and Sunday. And who knows, maybe I'm there next weekend as well. And yes, रब रखा, अपना ध्यान रखिए. And what I just have to say is, life is like a traffic signal. जो life है ना, वो इसी तरीके से है. कभी आपकी लाइफ रेड हो जाती है, कभी वो एम्बर हो जाती है, और कभी चल पड़ती है तो ग्रीन हो जाती है. तो व्हाट इट सिंबलाइजेस, जो रेड कलर है, टीचर्स पेशेंस. जब भी गुस्सा आए, जब भी परेशानी हो, तो प्लीज़ थोड़ा ठंडा रखिए अपने आप को. येलो टीचर्स अवेयरनेस एंड प्रिपरेशन कि हाँ जी थोड़ा खतरा है, बी केयरफुल, बी अवेयर व्हाट्स गोइंग अराउंड यू इन द सराउंडिंग्स. और ग्रीन टीचर्स यू राइट एक्शन कि अब एक्शन का टाइम है. एवरी सिग्नल इन लाइफ guides you us towards wisdom. तो इस विजडम को अपने साथ रखिए और इंजॉय करिए. सुनते रहिए लाइका गोल्ड. दिस इज शीना सिंह. बाय बाय हमें राई प्यार के. फिर मिलेंगे चलते चलते. लिविंग यू विद दिस ब्यूटिफुल ट्रैक. एंड यस, सेइंग यू बाय बाय. हैव अ हैप्पी हैप्पी संडे.
5: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.
2: This is Leica Gold.
6: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
7: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
8: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
8: विजिट TravelHubWorld.com.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
2: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में
1: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
2: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में यूके में पहली बार
1: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन
2: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा
1: शाम 7 बजे डोर्स ओपन
2: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 02084260678
3: तेरा क्या होगा रे कालिया
4: सरदार मैंने पूनम के लड्डू खाए हैं
3: सारे लड्डू खा गया एक नहीं छोड़ा क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक शादी हो या त्योहार लोग कहते हैं लड्डू हो तो बस पूनम के हो
5: जब पूनम की स्वीट्स मंगवाली तो हो गई अपनी हैप्पी दिवाली
2: पूनम स्वीट सेंटर 86 वेस्टर्न रोड साउथ हॉल कॉल 02085744934 डिलीवरी भी अवेलेबल है उबर ईट्स पर
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
8: Southall Travel, at all protected.
9: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
10: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner, Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
11: લંડન હલો ગરબે ગુમવા શ્રી 27 ગામ પાટીદાર સમાજ યુરોપ સાથે માણો નવરાત્રી ભારતના લાઇવ બેન્ડ સાથે 10-20 ઓક્ટોબર સાંજે 7:30 થી એટ 27 પાટીદાર સેન્ટર વેમ્બલી એડલ્ટ ટિકિટ્સ £10 16-17 અને 18 ઓક્ટોબરે £15 5-10 વર્ષના બાળકોને £5 અંડર 5 ફ્રી 11 રાતનો સીઝન પાસ £100 રેડિયો પાર્ટનર લાઇકા રેડિયો નેટવર્ક 27 ગામ પાટીદાર સમાજના ગરબા એટલે Best.
12: Up next, Golden Rock with Unrock on Leica Gold. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
13: This is

0: भाई जन्म जन्म का तो पता नहीं, लेकिन इस जन्म में हमारा और आपका बड़ा ही पक्का साथ है लता जी। और रफी साहब की आवाज में भीगी पलके फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा भी आप सुन रहे थे। और खास तौर पर इस फिल्म के सभी नगमों में सबसे ज्यादा सफल, सबसे ज्यादा लोकप्रिय ये गीत जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। इसके अलावा ओ मदर मैरी जो सॉन्ग है वो भी बड़ा ही इमोशनल सॉन्ग इस फिल्म में शामिल हुआ। हालांकि बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस फिल्म का कनेक्शन ओडिशा से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इस फिल्म का वैसे तो संगीत दिया था जुगल किशोर और तिलक राज की जोड़ी ने, और एम जी हशमत साहब ने गाने के बोल लिखे थे जो भी आपने सुने जन्म जन्म का साथ है हमारा। और जैसा कि मैंने बताया कि उड़ीसा के साथ में इस फिल्म का बड़ा ही तगड़ा कनेक्शन है, क्योंकि ज़्यादातर फिल्म के हिस्सों की शूटिंग उड़ीसा में ही हुई और वहाँ की खूबसूरत लोकेशंस पर। खास बात ये भी कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कटक का चंडी मंदिर, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, गोपालपुर बीच और सोराडा का रोमन कैथलिक चर्च भी इस फिल्म में आप साफ साफ देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे सुपर संडे वाली महफिल में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया शीना जी का जो रितु जी को कवर कर रही थी, और आप लोगों के संदेशों का। अगला गीत रवि साहब की आंखों में सुनाते हैं और थोड़ी देर बाद बताएंगे कि कब जलानी है आपको अपने दिमाग की बत्ती। सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज ही भेजिए, और आपको एक ब्रिटिश पाउंड के बदले आज के दिन मिल रहे हैं 126 रुपीज़ 40 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: September means serious savings on blinds, curtains and shutters in the Hillary Super Sale. And right now, the savings are even bigger with an extra 15% off absolutely everything until the 29th of September. That's on top of up to 40% off hundreds of made-to-measure styles. Plus, this autumn, get a free blackout thermal lining on our favourite Roman blinds and curtains. And don't forget, with Hillary's, measuring and fitting is always included. So get window wise and book your free in-home appointment today at hillarys.co.uk. Conditions apply.
3: ये है लाइका गोल्ड। तुम देना साथ मेरा।
4: This part of the show is sponsored by O Hamnava Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months.

0: लेकिन
1: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Rafi sahab ki awaaz mein फिर वही दिल लाया हूँ. उपेन अय्यर साहब का इस फिल्म के लिए संगीत था और जॉय मुखर्जी आशा पारिक इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए थे. भाई इस गाने का जो सार था वो तो यही है कि भाई लाखों हैं निगाहों में लेकिन तुम ही पसंद आए हो. लेकिन जब पसंद आ गए हो तो फिर दिल का हाल क्या है वो बताएंगे आपको किशोर दा अगले गीत के जरिए.
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: दिलों का हाल बताते किशोर दा अनोखी अदा फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे। अब 80s की तरफ आपका रुख कराते हैं और एक और बहुत ही खूबसूरत 80s की आवाज़, 90s तक जो बहुत ही दिल अजीज रही, बहुत ही गूंजी और बहुत ही अच्छे अच्छे नगमे इस आवाज़ में रिकॉर्ड हुए। इनका नाम है मोहम्मद अजीज साहब और साथ में है एस जानकी। फिल्म का नाम है आखिरी रास्ता। बड़ा ही कमाल का गीत है उन लोगों के लिए जो इस वक्त ड्राइव पर है।
2: Hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., like a gold and like a radiant Midlands.

0: राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर जी के ऊपर फिल्म आ गया। ये गीत आरडी बर्मन साहब का खूबसूरत सा संगीत, फिल्म का नाम राजा रानी, कमाल की फिल्म। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं मुकेश साहब और लता जी की आवाज में, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कब आपको जलानी है अपने दिमाग की बत्ती। आने वाला है आज का गोल्डन वर्ड, आप बताए और हम सुनाए वाली थीम के लिए।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप, सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: लेमफाई के जरिए 1 pound के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 126.94 अफगानी 86, पाकिस्तानी रुपीज 367.51, बांग्लादेशी टका 163.47, श्रीलंकन रुपीज 437.41 एंड 1 US dollar 1.32।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Feel good classics all day. This is Leica Gold.

0: वैसे मानना पड़ेगा काफी हद तक जितेंद्र साहब जंपिंग जैक के ऊपर भी मुकेश साहब की आवाज बड़ी सूट करती थी। धरती कहे पुकार के फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत 1969 में फिल्म आई थी। और अब वक्त आ गया है आपके दिमाग की बत्ती के जलाने का। जी हाँ, और आप बताएं, हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड जो है वो है बड़ा बड़े या फिर बड़ी। याद रखें, बड़ा बड़े या फिर बड़ी, ये है आज का गोल्डन वर्ड। सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल।
1: दिस इज द लाइकर रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
2: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
3: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ये रिश्ता क्या कहलाता है, एवरीडे एट 7 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
4: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
5: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में
4: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
5: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में। यूके में पहली बार
4: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन।
5: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा।
4: शाम 7 बजे डोर्स ओपन।
5: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 02082606780।
3: Creative's team events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
6: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250 376.
7: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11,
8: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
10: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
12: हैव यू हैड अ बिरीवमेंट इन द family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
13: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
14: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
13: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
13: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
15: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
16: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
15: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
1: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
17: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
18: On RAG with Golden.

0: किशोर दा की आवाज में बेहद ही पॉपुलर खूबसूरत सा गीत बड़े दिल वाला फिल्म का 1983 में ये फिल्म आई थी और कमाल के इस फिल्म के सारे गीत और ये गाना अपनी फरमाइश के पिटारे से निकाल कर हम तक उछाला गया था किन किन लोगों की तरफ से वो आपको बताते हैं। रेखा जी, सालिग्राम जी और सोमिला मुंगुर और आरिफ साहब, मोहम्मद आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ही इस गीत को चुनने के लिए। पहला गाना कुछ कुछ होता है फिल्म से हमने आपको सुनाया था अलका याग्निक और सानू दा की आवाज़ में। लड़की बड़ी अनजानी है, बड़ा ही प्यारा है ये गाना और जैसा कि आपको बताइए दिमाग की बत्ती जल चुकी है। बहुत सारे प्यारे प्यारे बड़े बड़ी बड़े से खूबसूरत से गीत हम तक पहुँच चुके हैं, सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल। अगला गाना किसके फरमाइश के पिटारे से निकल कर आया है फिलहाल बताते हैं आपको, सुरबाजों का नाम, रफी साहब और आशा ताई, सुनते रहें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की। आज के दिन आपको एक पाउंड के बदले मिल रहे हैं 126 रुपीज एंड 40 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Need anything from Tesco? How about winning the best night in ever with one of 50 tech bundles worth £10,000? Woohoo! Spend £25 in-store or online with your club card to qualify. Tesco. Every little helps. UK and Isle of Man 18 plus only, club card required. Spend £25 on qualifying purchases in store or online. Max one entry per day. T's and C's restrictions and exclusions apply.
3: Ye hai. Like a gold.
4: This part of the show is brought to you by Anupama. Every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of

0: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: दिल देके देखो रवि साहब और आशा दाई की आवाज में शमी कपूर और आशा पारिक इस फिल्म में नजर आए थे। उषा खन्ना जी का खूबसूरत सा संगीत इस फिल्म के लिए और ये गीत हम तक पहुंचाया है। फरीदा गुलाम अली जी, राजन पटेल और कंचन जी ने बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार। डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जियो हॉटस्टार ऐप को और जियो हॉटस्टार ऐप अवेलेबल है स्काई टीवी पर एज एन ऐप।
0: On Rag with Golden Rag. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: रफी साहब की आवाज में जीने की राह फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना आने से उनके आए बाहर। अक्सर आप शादी ब्याहों में इस गाने को सुना करते होंगे। फिलहाल ये गाना हम तक पहुंचा है उल्लास जी और निर्मला जी। उल्लास जी, निर्मला जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is at all protected.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
3: Ye hai Leica Gold.
4: Leica Gold.
5: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।

0: अमित कुमार साहब की आवाज में बालिका वधू फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत पंचमदा का प्यारा सा संगीत। और इस गाने को सबसे ज्यादा लोगों ने चाहे सुनना, सबसे पहला नाम आता है अंजलि जी, मनु मनोहर साहब, हंसुमती जी, अमित पटेल साहब, संतोष जी, निम्मी जोहरा और हंसा मिश्री जी को भी ये गीत बहुत पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगला गीत किशोर दावलता जी की आवाज में आने वाला है, लेकिन उससे पहले पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 35 होस्टेड बाय रूबी रजा एंड डोनी ब्रास्को। राजबदन टॉक्स टू रूबी रजा एंड डोनी ब्रास्को अबाउट स्टेपिंग इनटू द रोल ऑफ सीईओ ऑफ वन ऑफ द ब्रिटेन लार्जेस्ट एशियन रेडियो नेटवर्क। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। लाइक एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: Need anything from Tesco? How about winning the best night in ever with one of 50 tech bundles worth £10,000? Spend £25 in-store or online with your club card to qualify. Tesco. Every little helps. UK and Isle of Man 18 plus only, club card required. Spend £25 on qualifying purchases in-store or online. Max one entry per day. T's and C's restrictions and exclusions apply.
2: Leica Gold TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price
2: at all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.

0: किशोरदा लता जी की आवाज में मोहब्बत बड़े काम की चीज है। बात तो सही है। त्रिशूल फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद जहूर खयाम साहब का संगीत, तो फिर कमाल का तो हो गई। और ये गीत हम तक पहुंचाया है अजिंक्य भावे रानी जी और कमल पटेल साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाइ मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: लेमफाइ के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 126.94, अफगानी 86, पाकिस्तानी रुपीज 367.4, बांग्लादेशी टका 163.21, श्रीलंकन रुपीज 437.36 एंड 1 यूएस डॉलर 1.32।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley. Like a gold. This is Like a Gold.

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
1: तेरा क्या होगा रे कालिया?
2: सरदार, मैंने पूनम के लड्डू खाए हैं.
1: सारे लड्डू खा गया, एक नहीं छोड़ा. क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक शादी हो या त्योहार, लोग कहते हैं लड्डू हो तो बस पूनम के हो.
3: जब पूनम की स्वीट्स मंगवाली तो हो गई अपनी हैप्पी दिवाली.
4: पूनम स्वीट सेंटर, 86 वेस्टर्न रोड, साउथ हॉल. कॉल 0208574-4934. डिलीवरी भी अवेलेबल है उबर ईट्स पर.
5: डिस्कवर द मैजिक ऑफ स्विट्जरलैंड विद मंत्रा हॉलीडेज सीनिक स्विस टूर. फ्रॉम द stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
6: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से 1 से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से. स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर, 22 Palmerston Road, हैरो, HA37RR. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0208426-0678.
7: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
8: On Rag with Golden Rag.

0: अखियों के झरोके से, फिल्म का नाम अखियों के झरोके से, और फिल्म का संगीत था रविंद्र जैन साहब की तरफ से। बड़ा ही खूबसूरत ये गीत रंजीता कौर और सचिन पिलगांवकर इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए थे। तो वक्त आ गया है आपको बताने का आज के गोल्डन रॉ के तीन ऑप्शंस। कायदे प्लस कानून ये हैं, ये तीनों ऑप्शंस होंगे गाने के, जिनमें से एक ऑप्शन आपको अपनी दिल की बत्ती जलाकर चुनना है और हमें बताना है अपनी पसंद, और उसे वोट की तरह कास्ट करना है। जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज़्यादा वोट्स हमें रिसीव होंगे वो गाना भारी मतों के साथ आज का बनेगा गोल्डन राग। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आपके सामने ये रहे गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस। पक्का आप कंफ्यूज होने वाले हैं लेकिन फिर भी, ऑप्शन ए है हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, फिल्म का नाम है उपकार। ऑप्शन बी है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, फिल्म का नाम तीसरी कसम। और ऑप्शन सी है इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, फिल्म का नाम है आंधी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, ये गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस आपको कंफ्यूज जरूर करेंगे लेकिन सुनिएगा अपने दिल की बात। ऑप्शन ए है हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, फिल्म का नाम है उपकार। ऑप्शन बी है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, फ्रॉम द फिल्म तीसरी कसम। एंड ऑप्शन सी इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, फिल्म का नाम है आंधी। आंधी की तरह अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दीजिए क्योंकि वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं ओपन। अगला गीत हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में, साथ में होंगे सोनू निगम साहब, लेकिन आप वोट करते रहें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आज के दिन

0: के ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 126 रुपीज 40 पैसे। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर करते रहें।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like a gold.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
5: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
4: डेजर्ट सफारी,
5: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
4: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
5: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the new Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.

0: सोनू निगम साहब और हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में वास्तव फिल्म का ये वास्तव में बड़ा ही प्यारा सा नगमा। और एक बार फिर से आपके लिए रिपीट करने जा रहा हूँ आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। ध्यान से दिल लगाकर सुन लीजिए क्योंकि वोटिंग लाइन्स हैं अभी तक ओपन और आप लोग वोट कास्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए है हर खुशी हो वहां तू जहां भी रहे, फिल्म का नाम है उपकार। ऑप्शन बी है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, फ्रॉम द फिल्म तीसरी कसम। एंड ऑप्शन सी इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, फिल्म का नाम है आंधी। आंधी की तरह अपने अपने वोट कास्ट करते रहे, कुछ ही वक्त बचा है आपके गाने को भारी मतों से विजयी बनाने का। अगला गीत सुनाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
0: लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स एट laikaradio.com।
2: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
3: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: लता जी मन्ने डे साहब की आवाज में श्री 420 फिल्म का ये विंटेज गोल्ड वाला गीत, और इसी के साथ आपको बताते हुए बड़ा खेद महसूस हो रहा है कि वोटिंग लाइन बंद हो चुकी है। ज्यादा परेशान मत होइए, सिर्फ वोटिंग लाइंस बंद हुई हैं, लेकिन चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। देखते हैं क्या दिया है सरप्राइज आप लोगों ने एक दूसरे को। सुनते रहे सुपर संडे वाली महफिल।
2: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
1: लेमफाई के जरिए 1 pound के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहा है 126.94, अफगानी 86.14, पाकिस्तानी रुपीस 367.16, बांग्लादेशी टका 163.11, श्रीलंकन रुपीज 437.34 एंड 1 US dollar 1.32।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £104 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Leica Gold.
2: This is Leica.

0: बस यही सारी दुआएं मेरी तरफ से आप सबके लिए। लता जी की खूबसूरत आवाज में उपकार फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। भाई इस गीत के लिए तो हम कहेंगे कि आप लोगों ने उपकार किया इसे चुनकर आज का गोल्डन राग। चलिए से लेते हैं नाम, नीता जोशी जी, मीना शाह जी, भानु शाह, निर्मला जी, हंसुमती जी, संध्या भावसर, उर्मिला पटेल, अमर साहब, ज्योति गिरी शाह, मिसिस सुदेश टेकियर, अमिता फाल्गुनी, मुकेश भट्ट, भानु, फरीदा गुलाम अली जी, सलमा जी फ्रॉम कैंट से, प्राची देसाई, प्रकाश, सुमित चौरसिया एंड कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गाने को आज का गोल्डन राग बनाने के लिए। कल्याण जी आनंद जी का इस फिल्म के लिए संगीत था। नेक्स्ट आ रही है सरिता जी, अब होगी आपसे अगले सप्ताह यानी कि वीकेंड में मुलाकात। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा सुनते रहें अपने परिवार जैसे सदस्य को यानी कि लाइका नेटवर्क को। टेक केयर, बाय बाय।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
3: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ये रिश्ता क्या कहलाता है, एवरीडे एट 7 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
4: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
5: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit Herald plastic.com.
7: દોસ્તી મસ્તી અને ઇમોશન્સ ની એક અનોખી સ્ટોરી.
8: સાંભળ, એક કામ કર, મેડિકલ દેલે અને નાખતા જઈએ.
9: નાખતા જઈએ એટલે
7: સોલ સૂત્ર પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ મિત્રતા ફ્રેન્ડશિપ ની લવ સ્ટોરી, પ્રોડ્યુસ્ડ બાય પાર્થિવ ગોહિલ એન્ડ માનસી પારેખ, ડિરેક્ટેડ બાય ઓનિલ કર્ણિક.
10: તો ગાંડો છે, આગળ વાળો બ્રેક મારે તો પાછળ વાળો બ્રેક મારે છે યાર.
11: કારી મારી દોસ્તી
7: કો. સ્ટારિંગ વિરાજ ખેલાણી, દીપ વૈદ્ય, વિશાલ પારેખ એન્ડ વિશ્વા જોશી. મિત્રતા ઇન સિનેમાઝ નાઉ. યુકે રિલીઝ ડિટેલ્સ માટે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરો બકરાનિયા મીડિયા.
12: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
13: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
12: ये तो बताओ, कोई पता चला?
13: गुरु गुरु,
14: इस 6 November को द प्रिंस रिजेंट होटल में
13: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है.
14: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 November.
15: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
12: शीघ्र शीघ्र
14: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6 November.
16: टू बुक कॉल 0208 514 5400. Book online at Eventbrite.
17: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
18: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
19: Visit mantraholidays.co.uk or call 0203 773 633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
0: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
0: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
0: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
15: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
9: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
20: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
9: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
21: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
22: Next, Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Like a Gold.
23: Hey there, main hu Bali Brambat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baatein, raag adharit gaane on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 p.m. to

0: समोवाल आपकी सेवा में हाजिर है आज के प्रोग्राम के साथ। और मुझसे पहले थे अनुराग यहाँ पर ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो पर। एनिका वाज सिटिंग इन फॉर आनंदी एंड अभी भी वो कैरी ऑन करेंगे। एंड सरिता आपकी सेवा में हाजिर यहाँ पर।
1: लाइका गोल्ड, लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स back to back, sponsored by travelhubworld.com. for the best service and unbeatable prices, visit travelhubworld.com. travelhubworld.com.
2: humse sasta kahin nahi mil sakta.
3: travelhub
2: at all protected.
1: Leica. Sarita Sabharwal.

0: गुड आफ्टरनून. दो गीत आपने बैक टू बैक सुने और दोनों गीत ज़बरदस्त थे और दोनों गीतों में कुछ कॉमन था. क्या कॉमन था आप सोचेंगे, कोई वर्ड तो था ही नहीं कॉमन. तो सोचते रहिए, सोचिए. आज का सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, ज़रा सोचें कि क्या कॉमन था. शायद नहीं पता चले तो फिर अगला गीत सुनेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए. एंड हाँ, किसी ने कहा कि शाहरुख खान कॉमन है दोनों गीतों में. तो यस, ये एक तो ये चीज़ ज़रूर है. यस बॉस में भी, दिल तो पागल है में भी, दोनों गाने उन पर ही पिक्चराइज हुए थे. और यस बॉस का गीत सबसे पहले आज के प्रोग्राम में शामिल हुआ. यस बॉस ये अज़ीज़ मिर्ज़ा साहब ने डायरेक्ट की थी फिल्म. संगीत था जतिन ललित का. एंड इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ ही जूही चावला एंड आदित्य पंचोली भी. और इसका संग जो एक गीत था, एक दिन आप यूं ही हमसे मिल जाएंगे, दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिलीप कुमार सॉन्ग शाम गम की कसम फ्रॉम द मूवी फुटपाथ इन 1953. और क्या काम और क्या था इस गीत में, ज़रा सोचते रहिएगा. दूसरा गीत दिल तो पागल है फिल्म से मैंने चुना था. यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था और यश चोपड़ा जी के को आज हम याद भी करेंगे इन द नेक्स्ट आवर भी एंड फॉलोइंग आवर भी. उनके कुछ गीत मैं ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करती रहूँगी. एंड इस फिल्म में भी काम किया था शाहरुख खान ने. माधुरी दीक्षित थी, करिश्मा कपूर थे, अक्षय कुमार थे एंड म्यूज़िक था उत्तम सिंह जी का. यश चोपड़ा जी के बारे में जो नहीं जानते तो उन्हें बता दूं कि आज के दिन उनका जन्म हुआ था. उनके जन्म एनिवर्सरी पर या जन्मतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं. 1932 27th ऑफ सेप्टेम्बर को उनका जन्म हुआ था और 21 अक्टूबर 2012 में वो इस यहाँ को छोड़कर गए, पर पीछे छोड़ गए एक बहुत बड़ी विरासत भी. अब ज़रा आपसे पूछ लो, कैसे हैं, कैसे मिजाज हैं आपके. उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं और इंजॉय करेंगे नेक्स्ट 3 आवर्स विद मी. और मेरा वादा है कि अच्छे अच्छे गीतों से मैं आपका मनोरंजन करती रहूँगी. आज हम महेंद्र कपूर साहब को भी याद करेंगे उनकी डेथ एनिवर्सरी पर. और बड़े अच्छे अच्छे गीत आज के प्लेलिस्ट पर हैं और उम्मीद करती हूँ कि इन सभी गीतों को आप पसंद करेंगे. हाँ जी, तो फिर अगर तबीयत ठीक नहीं है तो क्या करना है आपने, जस्ट वेट, हो जाएगी ठीक. इतना फिक्र नहीं करते हैं. और इफ़ यू आर फीलिंग अ बिट डाउन तो कम ऑन, चीयर अप. लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू एंजॉय. जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता. चाहे आप जहाँ भी बैठे सुन रहे हों, चाहे लाइका गोल्ड 1035 पे सुन रहे हैं, DAB पर, अलेक्सा पर, गूगल होम एंड लाइकागोल्ड.com के जरिए सुन रहे हैं, कहीं भी बैठे, मिडलैंड्स में हैं, मैनचेस्टर में हैं या लंदन और ग्रेटर लंदन के किसी भी इलाके में है. अब तो हम ब्रेडफोर्ड, लीड्स सब जगह सुनाई देते हैं, वुल्वरहैम्पटन में, श्रूसबरी में. तो जहाँ भी बैठे आप सुन रहे हैं, आपका स्वागत, आपका खैर मकदम है. आइए जरा आगे बढ़ लें.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 126 rupees and 40 paisas today. And don't forget to exchange in

0: now visit starters.co.uk or call
1: 0208-900-2323 0730-00-9823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730-00-9823।
2: हमारी रक्षक है वो।
3: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
4: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है? कौन कर रहा है ये?
3: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, The One, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia, in cinemas now. For UK release details, follow Bakrania Media on Instagram.
5: गरम सत समाज UK के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा।
6: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम।
5: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
6: रात 8 बजे से देर रात तक। टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट। 5 साल से छोटे बच्चे फ्री।
5: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए। टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
6: 0795645872।
5: तो मिलते हैं गरबा में।

0: किसी के बस में नहीं रहता जब किसी से किसी को प्यार हो जाता है। आप भी इस दौर से ज़रूर कभी ना कभी गुजरे होंगे, क्यों आपका भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था या नहीं।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Bhai abhi tak ek bhi sahi jawab mujhe nahi mila ki aaj ki geeton mein kya chal raha hai. Agar nahi pata chale to main aapko zyada intezar nahi karaungi, main bata deti hu ki aaj ke sabhi geeton mein, is hour ke sabhi geeton mein whistling hai. यस, आपने नोटिस किया कि विस्लिंग किस किस गीत में थी। सबसे पहले हमने शुरू किया आज का प्रोग्राम मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, यस बॉस का गीत था, एंड अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक ने गाया था, जतिन ललित का था संगीत, और इस फिल्म के इस गीत में विस्लर थे नरगेश सरवैफ, जो कि बहुत जाने माने बॉलीवुड में जाने जाते हैं कि उनकी विस्लिंग का कोई मुकाबला नहीं है, और इस गीत में उन्होंने विस्लिंग की थी एंड बहुत प्यारा गीत था। दूसरा गीत था द आइकॉनिक विस्लिंग इन द सॉन्ग अरे अरे ये क्या हुआ, दिल तो पागल है का गाना, एंड ये भी परफॉर्म किसने किया था, म्यूजिशियन जो है नरगेश सर्वे, उन्होंने इसमें भी विस्लिंग बजाई थी। एंड द 1997 फिल्म द कैरेक्टर राहुल प्लेड बाय शाहरुख खान एंड फेमसली यूजेस दिस कैची ट्यून टू टेंस द कनेक्ट विद पूजा प्लेड बाय माधुरी दीक्षित। सो उनका उत्तम सिंह ने वैसे संगीत दिया था इस फिल्म का, लेकिन विस्लिंग जो थी वो डब की थी नरगेश सर्वे ने। और तीसरा गीत दिल क्या करे, ये भी गीत राजेश रोशन जी ने इसका संगीत दिया था, किशोर कुमार ने गाया था, और इस गीत में भी विस्लिंग किसकी थी, नरगेश सर्वे जी की। तो मुझे उम्मीद है कि तीनों के तीनों गीत आपने पसंद किए।
1: ये है Laika Gold Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.
0: कोका नूडल्स वाले ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस गीत के बारे में भी बता दूं मैं आपको कि इसमें भी तो विस्लिंग है ना, विस्लिंग इन द सॉन्ग, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये विस्लिंग किसने की थी, आर डी बर्मन साहब का संगीत है, उनके असिस्टेंट भी थे, सैक्सोफोनिस्ट थे मनहूरी सिंह जी, और ये वाली विस्लिंग उन्होंने की थी, वॉज अ फिल्म शोले। क्यों अच्छे लग रहे हैं गाने, इशारा तो मिल रहा है, संध्या भाव सर, सलमा जी, अर्जुन जी, विमल जी, हार्पी संधू, महेंद्र पटेल जी,

0: हम भी ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे और इसी तरह से आप मेरा और मैं आपका साथ देती रहूंगी।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: और भाई अब एक मैसेज है जो आपके साथ शेयर कर लूं, एंड ये मैसेज है फ्रॉम मर्सिडीज बेंज वैंस। इन एसोसिएशन विद लाइका रेडियो नेटवर्क, व्हेन यू रन योर ओन बिजनेस, योर वैन इजंट जस्ट ट्रांसपोर्ट, इट्स योर लाइवलीहुड एंड रेपुटेशन। दैट्स व्हाई मर्सिडीज बेंज वैंस क्रिएटेड द अपटाइम प्रॉमिस, अ कंप्लीट सुइट ऑफ business advantages, things like 24/7 roadside assistance, extended workshop hours, real-time vehicle monitoring, in fact everything you need to stay in control of your van, downtime, and keep your business moving. Search Mercedes-Benz vans today and discover their uptime promise. TNC applies. Learn more at mbvans.co.uk/uptime promise. Like
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
0: राइट भी मेरे पास दो गाने हैं, एक ही फिल्म से, 9 दो 11 1957 की फिल्म है। वैसे विंटेज कोल प्रोग्राम नहीं चल रहा है, लेकिन इन दोनों गीतों में विस्लिंग है तो मैंने सोचा कि इन दोनों में से एक गाना मुझे ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करना है। एक गीत हम है राही प्यार के, किशोर दा ने गाया था इस फिल्म का गीत, और दूसरा था आँखों में क्या जी, आशा भोसले एंड किशोर दा का गाया हुआ गीत। ए और बी कौन सी है आपकी पसंद? हम है राही प्यार के, 9 तो 11 का गीत है किशोरदा की आवाज़ में, एंड बी इज आंखों में क्या जी, और ये आशा भोसले एंड किशोरदा ने गाया है। जोन सा भी गीत आपको ज़्यादा पसंद है जल्दी से मुझे बता दीजिए।
3: Give your home its autumn glow up with Dunelm. Cushions and throws that make your sofa impossible to resist. Done. Cozy curtains that keep the heat in when it's colder out. Done. Table set for dining in without forking out. Done. Your perfect bedding for a longer, deeper sleep. Beautifully done. This autumn, make your home feel a little more you with Dunelm, the home of homes.
4: लाइका गोल्ड
5: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
6: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Visit travelhubworld.com.
7: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
8: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
9: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी।
10: सामने काम कर मेडिकल देने अने नाकता चाहिए
11: इतना।
9: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी, प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख, डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक।
12: गांडो छे आगे वालों ब्रेक मारे तो पाछड़ वालों ब्रेक मारे ने यार। तारी मारी
9: दोस्ती। Starring Viraj Ghelani, Deep Vaitya, Vishal Parekh and Vishwa Joshi. Mitrata in cinemas now. UK release details mate Instagram par follow karo Bakrania Media.
13: नमस्कार। मार्च 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન। આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો માત્ર £4,499 પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે। સીટ્સ લિમિટેડ છે એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો। વિઝિટ maharajatours.co.uk ઓર કોલ 07956154846।
4: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
11: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
14: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
15: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
16: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
17: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
16: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery store.
18: Like a Radio Network. Proud hospitality partner.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
1: और प्रोग्राम का ये गाना हमें पहुंचाएगा न्यूज़ तक।

0: भी तुम कहो। और इन दोनों गीतों के जरिए हमने यश जी को याद किया। यश चोपड़ा जी की आज जन्मतिथि है, जन्म बर्थ एनिवर्सरी है, और उनका देहांत हुआ था 21st of October 2012 में, और आज ही के दिन इन 1932 इनका जन्म हुआ। ये एक फिल्मकार की सबसे बड़ी विरासत उसकी उनकी जो फिल्मोग्राफी कहा जाता है, माना जाता है। जब भी पर्दे पर कोई प्रेम कहानी हम देखते हैं, बारिश, संगीत, कविता, खूबसूरत यादों के साथ सामने आती है, तो कहीं ना कहीं यश जी की सिनेमाई जो है हमें याद आ जाती है कि किस तरह से उनकी फिल्म्स बनती थी। शिफॉन की साड़ीज, पहाड़ों को दिखाना, ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी को उन्होंने बहुत दिखाया था अपनी फिल्मों में। आज उन्हें हम याद कर रहे हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, उनकी फिल्मों के लिए, उनकी कहानियों के लिए, उनकी सिनेमाई एहसास के लिए जिसने करोड़ों दर्शकों का दिल जीता था। चाहे वो चांदनी हो, मेरी चांदी वाला गीत हो, या फिर पर्वत से काली घटा जो छाई। यश चोपड़ा जी चले गए, लेकिन उनकी बनाई दुनिया आज भी हमारे साथ है। कुछ और गीत भी यश जी के मैं ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करूंगी इन द नेक्स्ट आवर एज़ वेल, लेकिन बाकी के इस प्रोग्राम के, इस आवर के बाकी के गीत महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ हम सुनेंगे आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर। और कोशिश रहेगी कि रोहन उनके बेटे से भी बात हो पाए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर इनके जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो काम बड़ा आसान है। You can walk into the branch, you can go online, और ऐप अगर डाउनलोड किया हुआ है तो आप उसके जरिए कहीं भी बैठे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले आज आपको मिलेंगे 126 रुपीज़ और 40 पैसा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Listeners, we interrupt the airwaves to share an incredible discovery. The reason why Britain hasn't been so great of late is because the country hasn't been eating enough Weetabix. We must get to work in rebuilding Great Britain, Bix by Bix. By delivering Weetabix to whoever plans the traffic diversions, to delivery drivers who can't seem to find your house, and people who don't stack the dishwasher properly. To Britain, we must say, have you had your Weetabix?
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, every day at 8 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: What a beautiful song, Mahendra Kapoor साहब की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत मैंने चुना था from the film ये रात फिर ना आएगी. 1966 में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था और आज भी इतने सालों के बाद भी आज भी इतना पसंद किया जाता है. हम याद कर रहे हैं उस आवाज़ को जिसने देशभक्ति, प्रेम, विरह और जीवन के अनेक रंगों को अपनी आवाज़ में ढाला. एक ऐसी आवाज़ जिसे सुनते ही दिल में कई पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, महेंद्र कपूर साहब. एक ऐसी आवाज़ जो समय के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि हर बार सुनने पर एक नई याद छोड़ जाती है. जी हाँ, मैं आज महान प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर जी को याद कर रही हूँ. उनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1934 को अमृतसर में. अपनी मधुर और दमदार आवाज़ के दम पर उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई. उनके गीतों में भावनाओं की गहराई भी थी और आवाज़ में एक खासी अट्रैक्शन थी. फिल्म उपकार का मेरे देश की धरती हो या वक्त का गाना हो, चलो एक बार फिर से, चाहे गुमराह के गाने हों या फिर उनकी अनगिनत यादगार गीत, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ ने कई जेनरेशन्स के संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बनाई. उनकी आवाज़ सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही, उन्होंने फिल्म भक्ति गीतों का भी और देशभक्ति के गीतों का भी को भी अपनी आवाज़ दी और एक अलग सी पहचान दी. महेंद्र कपूर साहब को उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले, बहुत से उन्हें अवार्ड्स मिले थे. एंड मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे साथ हैं उन्हीं के सपुत्र रूहान कपूर, जो अपने पापा को आज याद भी कर रहे हैं और किस तरह से वो आज के दिन को मनाते हैं. मैं ज़रा उनका स्वागत करते हुए उन्हीं से पूछ लूँ. रूहान जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ जी, नमस्कार जी.
0: I'm good. तो आज आपकी ज़िंदगी का भी, आपके परिवार के लिए भी दुख भरा दिन ज़रूर है क्योंकि आपने अपने पापा को खोया, लेकिन उनके फैंस से जब आप ऐसी बातें सुनते हैं, उनको याद करते हैं, उनके गीतों को सुनते हैं, तो कैसा महसूस होता है?
1: देखिए, उनकी जो याद है हमेशा ही हमारे दिल में ताज़ा रहती है. मैं सच बताऊँ कि उनको हमने कभी इत्तेफाकन देखी, 2008 में उनकी डेथ हुई थी. मतलब वो शारीरिक बोलते हैं, उन्होंने छोड़ा था अपना
0: जी.
1: अब उस टाइम पर उनको महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र पुरस्कार दिया था
0: जी.
1: तो अब वो, जब वो अवार्ड डिक्लेयर हुआ था, ही वाज लिविंग, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट रिसीव द अवार्ड.
0: या गो टू रिसीव
1: इट. सीएम साहब का फोन आया था, जो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के
0: जी,
1: कि रोहन जी वी विल कम होम और मम्मी को वो लिफाफा पका देंगे, जो चेक वर्क जो भी होता है, ट्रॉफी हम आपको दे देंगे. मैंने कहा क्यों? तो वो कहते हैं कि पापा जी नहीं रहे इसलिए ना. इट वाज हिज 75th बर्थडे, व्हिच वाज द नेक्स्ट ईयर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट
0: जी.
1: तो फॉर दैट, तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे में क्या करें, हम लोग कैसे पुरस्कार का शो करें. तो मैंने कहा पुरस्कार का शो कीजिए और बहुत बाखूब कीजिए, बिकॉज ऐसे लोग शरीर छोड़ते हैं लेकिन जाते नहीं कहीं भी.
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है.
1: हाँ, मैंने कहा वो बिल्कुल जीवित हैं और उनकी जिंदगी को, ये मैंने अपनी माँ से भी कहा था,
0: सेलिब्रेट
1: करते हैं. और हम लोगों ने सबने ये माना कि मैंने कहा कि हम लोग उनको सेलिब्रेट करेंगे, ना कि एक नॉर्मल जैसे तरीके से. जो देखिए, दुख तो होता ही है, आप किसी भी चीज को, आप अपने इतने अजीज, इतने मतलब जो हमारी जिंदगी थे, जो हमारी जिन जान थे, उनको हम खोएंगे तो दुख तो होगा ही. लेकिन अब दुख दुख करके हम लोग कितनी देर उसको ऐसे करेंगे ना. तो हम उनको सेलिब्रेट करते हैं हमेशा, वी ऑलवेज सेलिब्रेट हिम. हम बोलते हैं, अरे तो उस टाइम भी आप बिलीव ना करें सर सरिता जी, बाबी चौहान और मैं सीएम ने एक शो रखा उनकी याद में, 75th बर्थडे एंड द महाराष्ट्र सरकार, वी क्लब टूगेदर एंड हु केम देयर. जगजीत सिंह अंकल को बोला, वो फटाफट उन्होंने हाँ कर दिया. सोनू निगम को बोला, आपके जसपिंदर नरोला जी को बोला, मधुश्री को बोला, उदित नारायण आए, शान आया, सब ने आके दो दो तीन तीन गाने डैड के गाए.
0: क्या बात है,
1: पूरी इंडस्ट्री वहां पर मेरे साथ. हाँ, और फिर उसके बाद सईद मी वाज ऑन द स्टेज, एवरीवन केम एंड सैंग एंड वेंट ओवर फ्रॉम देयर. रविंद्र जैन अंकल आए, उन्होंने भी गाया. तो बहुत आलीशान शो हुआ और मतलब यादगार वैसा ऑडिटोरियम भरा और ऐसी गड़गड़ाहट तालियों की उन्होंने कभी सुनी नहीं थी पहले. तो दे वर ऑल फ्लोर्ड एंड दे वर सो हैप्पी एंड वी वर ऑल्सो हैप्पी कि हिज लाइफ इज सॉन्ग्स आर सपोज टू बी सेलिब्रेटेड. वी आर इनके मॉडल आवाजें हैं, इनके मॉडल कर्म रहे.
0: इतनी बुलंद आवाज, इतनी क्लैरिटी थी उनकी आवाज में, इतना हाई पिच पर गाते थे. और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझती हूँ कि उनसे मुलाकात हुई, उनके शोज देखे भी और स्टेज पर उन्हें इंट्रोड्यूस किया. वेम्बले कॉन्फ्रेंस सेंटर था जहाँ उनका शो हुआ था और बहुत अच्छा लगा था मिलकर. एंड ही वॉज डाउन टू अर्थ, इतने प्यार से, ऐसा लगता ही नहीं था कि पहली दफा मिल रहे हैं. बहुत अच्छे इंसान थे.
1: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है.
0: तो आज क्या हो रहा है घर में?
1: बस अभी फैमिली में जा रहा हूँ. आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस कॉल टू टॉक टू ऑल आवर फ्रेंड्स हियर इन लंदन एंड टू माय डियर डियर सरिता जी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड for remembering him always, for giving
0: always.
1: All the love to him.
0: Always, we always remember him.
1: उसके बाद we'll all meet, sit down, share our moments, share our हम सब जो छोटे छोटे हमारे moments रहे life के, हम सब enjoy करते हैं सब बोल के एक दूसरे को.
0: बिल्कुल.
1: And dad आपको पता है, देखिए सब जानते हैं, he was a very good singer, a very humble human being, a very hard working person. But one person, one thing that I want to add in that. He had extreme good sense of humor, extreme sense of humor. उनका जो humor था ऐसा गजब का था. मुझे एक बार जॉनी लीवर भाई, हम लोग बैठे हुए, जॉनी एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, मुझे कहते हैं रोहन दुनिया मुझे हंसाती है. मैं हंसाऊ दुनिया को मैं हंसाता हूँ. आई मेक एवरीबडी लाफ. कहते हैं गॉड, आई एम फॉर्चुनेट, गॉड इज गिवन ब्लेस्ड मी. कहते हैं मेरी चीजों से लोग बहुत हंसते हैं बहुत. लेकिन मैं कसम से कहूँ रोहन, आई वॉन्ट टू कन्फेस टू यू, वन पर्सन हू मेड अ टेरिफिक इम्पैक्ट ऑन ह्यूमर to me in my life was Mahinder ji. कहते ऐसा सटल ह्यूमर और ऐसा ह्यूमर, कहते मैंने देख, मतलब वो ऐसी चीज गुगली मार जाते थे ऐसा वो
0: बोल जाते थे
1: ऐसा कुछ बोल. हाँ वो मतलब बिना किसी को रियलाइज हुए उन्होंने उन्होंने कुछ बोल, मतलब he had a very different sense, very very nice sense of humor. His jokes and after the shows all our organizers, all our musicians used to wait कि पापा जी आएंगे. So we used to meet them for a little time because everybody used to like to drink and smoke, but they used to not do it in front of dad.
0: I know.
1: So then dad said I will not disturb them too much. So 5-7 minutes. लेकिन वो 5-7 मिनट क्या था? पापा जी अब उसकी नकल होता है. मतलब he used to imitate all the organizers or some people whom they met before, and he would remember. And then he would imitate them absolutely used to do it.
0: क्या बात है, क्या बात. ये यादें रहे, बस यादें हैं, यादें हम चेरिश करते हैं. रोहन बहुत दिल चाह रहा है लंबी बात करने को, लेकिन वक्त बस यहीं तक इजाज़त देता है. थैंक यू सो मच. महेंद्र कपूर साहब को सदियों तक लोग याद रखेंगे इसी तरह से, और उनके गाए हुए गीत हम हमेशा चेरिश करते रहेंगे. थैंक यू एवर सो मच, और सभी को नमस्कार. थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते. ये थे रोहन कपूर, महेंद्र कपूर साहब के बेटे, और ये भी गाते हैं और इनके बेटे भी गाते हैं. बेटा भी बहुत अच्छा गाते हैं. तो उनकी भी प्राइवेट एल्बम्स वगैरह रिलीज़ हो रही हैं. चलिए ये बता दूं, मेरा प्यार वो है, वो गीत आप तक पहुंचाया था डेरी वैली वालों ने.
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Like a Gold. Like a Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a
2: महेंद्र कपूर साहब को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके गाए हुए गीत आप तक पहुंचा रही हूं। उनके बेटे रोहन कपूर से अभी बातचीत हुई और अब मैं ज़रा आपको बता दूं कि कविता कृष्णमूर्ति जी आ रही हैं परफॉर्म लाइव एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1 नवंबर, ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज ए दिवाली स्पेशल। आज तो स्पेशल डे भी है, रामायण स्पेशल दिखाई जा रही है एंड ओवो अरीना में, ओवो वेम्बली अरीना में। अगर नहीं टिकट लिए तो जल्दी से चले जाइए, 6 बजे शो शुरू है। टिकट्स फ्रॉम और कृष्णमूर्ति जी का, कविता कृष्णमूर्ति जी का शो हो रहा है 1 नवंबर को रॉयल अल्बर्ट हॉल में। टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइक अ रेडियो नेटवर्क। और रागासन के बारे में बता दूँ कि रागासन लाइक अ रेडियो नेटवर्क हैज़ कन्फर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स एट likearadio.com।
1: Sarita Sabharwal, the biggest classics on Like a Gold. Like a Extra
2: podcast update. और इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि इस बारी हमारे होस्ट हैं रूबी रजा एंड डॉनी ब्रास्को एंड गेस्ट हैं हमारे सीईओ राज बदन जी, जो कि उन दोनों से बातचीत करेंगे और अपने ब्रिटेन्स लार्जेस्ट एशियन रेडियो नेटवर्क के बारे में बातचीत करेंगे एंड ये बताएंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही बिहाइंड द टाइटल। और ज़रूर देखिएगा लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज़ अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
3: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Oh, how relaxing was that yoga session? I feel so free.
5: Speak for yourself. I can never let go. Bladder leaks.
4: I know, right? I'm so done compromising. I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
5: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
4: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
5: Let's just say I found my flow.
4: Always discreet. Live with no compromise.
6: Ye hai Leica Gold.
7: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट travelhubworld.com।
8: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: विजिट travelhubworld.com।
9: करम सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा।
10: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम।
9: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
10: रात 8 बजे से देर रात तक। टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट। 5 साल से छोटे बच्चे फ्री।
9: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए। टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
10: 07956458872।
9: तो मिलते हैं गरबा में।
11: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at Quality Food Branches.
2: Royal Chai लाए हैं स्मार्ट सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 126.87, Afghanis 86.1, Pakistani rupees 366.96, Bangladeshi taka 162.96 and US dollars 1.32.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: LEICA
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold ka rate is worth market mein 104 pounds exactly for 1 gram sona.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7am Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
1: Right, bhai, ye to the hamare Deep Raja ji aapko bata rahe the.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: राइट आप दो गीत और सुन पाएंगे महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में गाए हुए. अगला गीत है आशा जी साथ दे रही हैं. इस गीत में दिल और मोहब्बत से मैंने चुना है. ढेर सारे गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं, लेकिन अब उनमें से कुछ एक चुनना बहुत मुश्किल काम होता है. और आप सभी को मेरी रोहन कपूर से हुई बातचीत बहुत पसंद आई, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा. पुरानी यादें जब हम ताज़ा करते हैं तो और भी अच्छा लगता है. और मेरी भी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सी सेलिब्रिटीज़ के साथ मुलाकात हुई, उनसे उनको इंटरव्यू भी किया, तो अच्छा लगता है. चलिए अब ये गीत सुनते हैं महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में गाया हुआ, और उसके बाद गुमराह का एक गीत आ रहा है जो हमें लेकर चलेगा न्यूज़ तक. न्यूज़ के उस पार कुछ और यश जी की फिल्मों के गीत होंगे, हो सकता है महेंद्र कपूर साहब की भी आवाज़ शामिल हो.

0: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
2: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02023736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स your travel mantra.
0: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
3: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
0: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
3: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
0: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
3: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
0: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
3: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
5: दोस्ती, मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी।
6: सांबड़ एक काम कर, मेडिकल देले अने नाकता चाहिए। नाकता चाहिए इतना?
5: Soul Sutra Productions presents मित्रता, फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी। Produced by पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख। Directed by ओनिल कर्णिक।
7: तू का अंडो छे? आगे वालों ब्रेक मारे तो पाचर वालों ब्रेक मारे से यार।
5: Starring Viraj Khilani, Deep Vaitya, Vishal Parekh and Vishwa Joshi. Mitrata in cinemas now. UK release details mate Instagram par follow karo Bakrania Media.
8: Jab ladki ke sar pe baap ka saaya na ho to wo maa ka hi raasta apnati.
9: Ise hamesha yaad rakhna.
10: Kaash koi aa jaye, unhe samjhaye.
0: Usse Yoni, every day at 6 PM on Star Plus and watch anytime on Jio Hotstar.
11: નવરાત્રી માં કૃપા ફાઉન્ડેશન સાથે ગરબે ઘૂમવા તૈયાર થઈ જાઓ।
12: 10-19 ઓક્ટોબર દરરોજ સાંજે 7-11 વાગ્યા સુધી ગરબા અને દાંડિયાની રમઝટ ભારતથી પધારેલા કલાકારો સાથે।
11: ટિકિટ્સ મંડે ટુ થર્સડે એન્ટ્રી £5, ફ્રાઇડે ટુ સન્ડે £7, વેન્યુ માં કૃપા ફાઉન્ડેશન હોલ, ફર્સ્ટ ફ્લોર, યુનિટ 2, 10 સ્ટોનફિલ્ડ વે, સાઉથ રાઇસલિપ, HA40JS।
12: બુકિંગ માટે કોલ કરો રશ્મિ શાહ 0772-287-509।
11: એ હાલો ગરબે
13: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
14: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
13: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
15: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February, it's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
16: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
17: Leica Radio Network.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: भाई बी आर चोपड़ा के साथ काम करते हुए फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखी और आगे चलकर अपनी अलग सी पहचान बनाई। उन्होंने धूल का फूल, वक्त, दाग, दीवार, त्रिशूल जैसी फिल्मों में अलग अलग विषयों को पर्दे पर उतारा और बाद के जो साल थे उनमें प्रेम कहानियों को अलग सी शैली में दिखाया था। बहुत ही अच्छे, बहुत नेक इंसान थे। यश जी से भी अब आप कहेंगे सरिता सबसे मुलाकात हुई, यश जी को मैंने इंटरव्यू किया था एंड उनका इंटरव्यू मेरे लिए एक यादगार इंटरव्यू है, लेकिन क्या करूँ, फिर से मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो कौन बिलीव करेगा सरिता कि यश जी से मुलाकात हुई। यस, आई डिड गो टू समबडीज हाउस टू इंटरव्यू हिम। वेल, बता देती हूँ कि मेफेयर में उनका होटल है और उन्हीं के घर में जाकर मैंने उन्हें इंटरव्यू किया था। एंड उसी होटल में पहले मैंने करण जौहर के फादर यश जी को और साथ में महेश भट्ट जी को भी उन्हीं के होटल में इंटरव्यू किया था। सो अब मैं नाम नहीं लूँगी, पर बहुत सी यादें हैं हमारी यश जी के साथ भी। सो आपने दोनों गीत सुने और यश जी को की फिल्मों के बारे में क्या कहूँ, उन्होंने एक से बढ़कर एक अच्छी फिल्में बनाई हैं और पर्दे पर कई प्रेम कहानियाँ बरसात दिखाई। संगीत उनकी फिल्मों का यादगार है, हर किसी फिल्म का संगीत आप उठा लें यश जी की फिल्मों का संगीत, क्योंकि उनको संगीत की खुद भी बहुत नॉलेज थी और उनकी फेवरेट सिंगर थी लता मंगेशकर जी। खूबसूरत यादें दिखाते थे वो हमेशा, कविताएं जैसे फिल्म दाग में कविता पढ़ना किनका, राजेश खन्ना का, एंड देन सिलसिला में अमिताभ बच्चन का कविता पढ़ना। सो ऐसे उनकी फिल्मों की अलग सी पहचान बन गई थी। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उनकी फिल्मों के कुछ एक गीत मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। हाँ, यहाँ भी चॉइस दे रही हूँ दो गीतों की, फिल्म दाग में से मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कौन सा गाना आप तक पहुँचाऊँ। इज़ इट मेरे दिल में आज क्या है, या फिर हम और तुम और हम खुश हैं आज यूं मिल के, वो वाला गीत आप सुनना चाहते हैं। ए, मेरे दिल में आज क्या है, बी इज़ हम और तुम और हम, कौन सा गीत आपके दिल के करीब है जल्दी से बताते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ, SBI वाले आज आपको दे रहे 126 rupees and 40 paisas against 1 British sterling pound. You can go into the branch, you can always do it online, या फिर SBI UK का अगर आपने Yono का app download किया हुआ है तो घर बैठे आप पैसे transfer कर सकते हैं. Terms and conditions apply.
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: When you're ready for anything, where will you go? With a hybrid engine backed by over 25 years of expertise, the new Toyota Yaris Cross Hybrid is ready for what's next. Start exploring with 0% APR representative over 24 months.
3: Available on PCP over 24 months through Toyota Financial Services by 15th December 2026. Optional final payment subject to status, driver ratings, indemnities may be required. T's and C's apply. See website.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a Gold. This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु,
6: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
5: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है,
6: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
4: साधु, तो शुभकामनाएं में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
8: टू बुक कॉल 0208-514-5400, online at Eventbrite.
2: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
7: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
8: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
7: 31st October, Matthew.

0: हमारी इस हफ्ते की आर्टिस्ट कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में गाया हुआ 1942 अ लव स्टोरी से मैंने चुना था इस गीत को। आर डी बर्मन साहब ने संगीतबद्ध किए थे इस फिल्म के गीत, लेकिन इन गीतों की शोहरत देखने के लिए वो जिंदा नहीं रहे थे, उससे पहले ही उनका देहांत हो गया। लेकिन 1942 अ लव स्टोरी के लिए बहुत से गीत पसंद किए गए, कि इस फिल्म के सारे गाने पसंद किए गए, और कुमार सानू को एक लड़की को देखा के लिए अवार्ड भी मिला। मजरू सुल्तानपुरी साहब को भी अवार्ड मिला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एंड बहुत से गीत हैं जो मैं सोच रही हूँ प्रोग्राम में शामिल करूँ, पर देखते हैं कि वक्त कहाँ तक इजाज़त देता है। ज़हीर खान साहब कराची में सुन रहे हैं, सलमा जी मिडस्टोन कैंट में, और आप हैं हमारे हरीश जी, थैंक यू मेरे दिल में आज क्या है वो गीत सुनना चाहते हैं, और के भमरा जी आप बी नंबर सुनना चाहते हैं, विजय गुजरी जी सटन में सुन रहे हैं, उल्लास टोरंटो में, हरप्रीत संधू वैंकूवर में, दिनेश पोपट जी थैंक यू, अर्जुन जी, हन्ना भारती जी, वजाहत आप भी सुन रहे हैं प्रोग्राम, सोनी रावल जी, मिसेस शेख तोशी जी आप भी सुन रहे हैं, संध्या बाप सर, करसान पिंडोरिया आपने लिखा है कि आजकल हम लंदन में नहीं हैं बल्कि अमृतसर में हैं आज, और टुमारो ट्यून हम ट्यून करेंगे लाइक अ गोल्ड, इन्जॉइंग योर चॉइस ऑफ म्यूजिक एंड चॉइस ऑफ सॉन्ग्स, विल बी विजिटिंग जलियावाला बाग एंड गोल्डन टेम्पल्स एंड वाहेगुरु जी नहीं वाघा बॉर्डर भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, प्लीज़ प्ले अ नाइस सॉन्ग फॉर अस, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि जो भी गीत मैं प्ले कर रही हूँ आपको पसंद ज़रूर आ रहे होंगे। एंड जादू तेरी नज़र सुनना चाहते थे, वाह वो वजाहत जी थैंक यू आपका बहुत बहुत, प्रकाश सुथर जी नॉर्थ ऑल्ट में, वत्सला जी, इंतशाब एंड अरुणा जी, शेखर जी, रेणु जी, मोहम्मद अयूब चौहान साहब, महेंद्र पटेल इन क्रॉयडन, भानु शाह, हंसा जी, हसुमती जी, आप सभी का, फरीदा गुलाम अली जी, सबका मैं थैंक्स करना चाहूंगी।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये है Laika Gold, 10:35 AM.
3: और मेरे बहुत से साथियों की फरमाइश पर आ रहे आज के प्रोग्राम का अगला गीत किशोरदा की आवाज में.
0: Laika Radio. Now in more places than ever before. Birmingham, Bradford, Huddersfield and Leeds.

0: 1979 में बनाई थी यश जी ने ये फिल्म, जिसका नाम था काला पत्थर, और बहुत सी मल्टी स्टारर फिल्म थी, और संगीत भी इस फिल्म का बहुत पसंद किया लता जी की आवाज़, और मैं आवाज़ मिलाई मोहम्मद रफ़ी साहब ने, गीत आप तक पहुँचाया।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today. Kitne paise milenge? Ek pound ke badle aapko 126 rupees and 92 paisas in Indian currency. Afghanis 85.99, Pakistani rupees 367.15, Bangladeshi taka 162.95, Sri Lankan rupees 437.26.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: It's £104 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: नीसा नासिर, लाइक अ गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है। बिग शो सुनना भूलिएगा मत।
2: ये है
4: लाइका गोल्ड,
0: और लाइका गोल्ड पर लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए मैं सैटरडे एंड संडे आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ। आज संडे है तो अगली मुलाकात हमारी सैटरडे होगी, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपका साथ दूंगी। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम भी हमेशा की तरह आपने खूब इंजॉय किया, आपका पूरा हफ्ता बहुत अच्छा बीते, सभी सोचे हुए काम पूरे हों। अगर कोई स्पेशल डे है तो खूब अच्छी तरह से मनाइएगा अपना स्पेशल डे। और अब मेरे जाने की बारी है, और सैंडी वैसे आते हैं लेकिन विंटेज गोल्ड के लिए आ जा रहे हैं सुप्रतिम, जो कि आपको बहुत अच्छे अच्छे गीत भी सुनवाएंगे, और उसके बाद हमारे लेट नाइट जो गोल्ड नाइट्स होती हैं वो भी सभी गाने बड़े अच्छे होते हैं। और दूसरी तरफ नीरज आ रहे हैं, उनका साथ दीजिएगा लाइका रेडियो पर, और इधर आएंगे सुप्रतिम और जेसी विल बी देयर इन मैनचेस्टर। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाय फॉर नाउ।
5: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
6: करम सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा।
7: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम।
6: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA,
7: रात 8 बजे से देर रात तक। टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट, 5 साल से छोटे बच्चे फ्री।
6: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए। टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
7: 07956458872।
6: तो मिलते हैं गरबा में।

0: Book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी
2: सामने काम कर मेडिकल देले अने नाकता चाहिए
3: इतना
1: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक
4: तू का अंडो छे आगे वाला ब्रेक मारे तो पाछा वाला ब्रेक मारे ने यार तारी मारी
1: दोस्ती स्टारिंग विराज खिलानी दीप वैद्य विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी मित्रता इन सिनेमाज नाउ यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danu Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
1: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
2: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
2: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 0192322727274. बुक योर टेबल टुडे. वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट रागासन.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
3: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
4: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
3: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
5: सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स.
6: लाइक अ गोल्ड, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन.

0: राज कपूर साहब इन हिज ट्रू मेटल, संग बाय मुकेश जी एंड शारदा जी. म्यूजिक डायरेक्टर्स वो शंकर जयकिशन एंड शैलेंद्र वाज द लिरिसिस्ट फॉर दिस सॉन्ग. इट द नेम ऑफ द फिल्म अराउंड द वर्ल्ड, 1967 मूवी. इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि शंकर जयकिशन, स्पेशली शंकर साहब, वॉज सो इन्वॉल्व इन दिस इंटायर थिंग एंड ही वॉज अ एक्सपोनेंट एंड काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो प्ले कर सकते थे. तो उन्होंने ऑर्केस्ट्रा लगाया और एक पियानो अपने लिए अलग से लगवाया टू प्ले अलॉन्ग, कि कोई कुछ गलत ना हो जाए इस गाने में इन टर्म्स ऑफ द अरेंजमेंट. सो दैट्स पैशन फॉर यू. उससे पहले वाला जो आपने गाना सुना, दैट वॉज दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, was again a beautiful beautiful song which was picturized on the great Shammi Kapoor sahab. Film ka naam Brahmachari, 1968 ki ek film. Isme bhi Shammi Kapoor sahab ke saath thi Rajeshri aur singer iske the Mohammad Rafi sahab, Shankar Jaikishan, again the music directors and lyricist Hasrat Jaipuri sahab. I hope you enjoyed these two back to back songs. Aise hi बहुत सारे गाने होते हैं विंटेज गोल्ड में, विच आई, इफ यू आर ओल्ड टू द प्रोग्राम यू नो अबाउट इट, ग्रेट. इफ यू डोंट, देन दिस इज योर टाइम टू जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड लिसन टू मी फॉर द नेक्स्ट 3 hours. सो 7 बजे से 10 बजे तक होता है विंटेज गोल्ड एंड वी हैव लोड्स ऑफ सॉन्ग्स. टुडे इंसिडेंटली वी आर ऑल्सो मार्किंग द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महेंद्र कपूर जी, another stalwart of the Hindi film industry. And every hour I'm going to play some songs from him, and especially the ones which we don't hear on a regular basis. So I hope you do enjoy them when you get a chance to listen to them. Thank you for your lovely messages. There's been loads of messages coming in, so thank you so much. A big thank you to Sarita ji for her program. She will be back on the hot seat next week. And so, you know, Sandy Shah will be back with Drive Time from tomorrow onwards, and he will be back on Vintage Gold again for the weekend. So, der kis baat ki, let's sit back, relax and enjoy what's coming next. Mahendra Kapoor sahab from the film Hamraaz.
1: WhatsApp message Like a Gold now on 0744 23 23 23.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Truly a feel-good song. So thank you to Derry Valley for that one. Gana, aap jab ye sunte hain, so obviously you think it is funny and which it is. बट इसमें कितनी गहरी बात कह डाली थी राजेंद्र किशन की कलम ने और सी रामचंद्रन का म्यूज़िक और इसके गीतकार भी सी रामचंद्रन थे लता मंगेशकर जी के साथ एंड द मेन आर्टिस्ट व भगवान दादा एंड गीता वाली. काफ़ी लोगों को शायद ये बात पता नहीं है लेकिन अमिताभ बच्चन ने खुद कहा है कि ही ऑलवेज कॉपीड भगवान दादा इन हिज डांसिंग स्टाइल. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी इफ यू सीन दिस सॉन्ग. द फिल्म इज़ अलबेला 1951. Beautiful film. ऐसे ही गाने और आने वाले हैं. मेरा नाम है सुप्रतिम. आई एम सिटिंग इन फॉर सैंडी शैटरडे.
3: ये है लाइका गोल्ड.
2: वेल, मर्सिडीज बेंज वैंस इन एसोसिएशन विद लाइका रेडियो नेटवर्क हैज दिस इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू एंड दिस इज क्वाइट अ शॉकिंग नंबर व्हिच इज दैट व्हीकल डाउन टाइम कॉस्ट अक्रॉस द यूके इज an average of £1,172 per van per day, which is a massive loss to individuals. That's why Mercedes-Benz vans have created an uptime promise. This is a roadside assistance extended service which is provided on a real-time basis, and there are loads of advantages that come along with it. So search online for Mercedes-Benz vans today and discover their uptime promise.
0: Vintage Gold with Sandy Shah on Leica Gold, Greater London.

0: कस्मे वादे प्यार वफा सब, वॉट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. फिलोसफी एट इट्स बेस्ट आई थिंक, एंड ब्यूटिफुली रिटन बाय गुलशन बावरा साहब. म्यूजिक वॉज गिवन बाय कल्याण जी आनंद जी, एंड दिस इज फ्रॉम द सुपरहिट फिल्म उपकार 1967, मल्टी स्टारर विथ मनोज कुमार एंड आशा पारेख एंड प्राण साहब. क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस इज प्राण साहब वॉज एट हिज पीक एज अ विलन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. This film, he was a character artist, a very positive character, and people weren't very sure whether it's going to work. And Kalyanji did think that it would work with Pran and this song, and it actually did. And it changed Pran Saab's career trajectory after that, and became a beloved villain as well as a character artist post that. So, ऐसे ही गाने Vintage Gold में ऐसी कहानियाँ चलती रहती हैं. सुनते रहिए. मेरा नाम है सुप्रतिम. I'm sitting in for Sandy Shah today.
1: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo. Only Like a Gold.
2: Mia!
3: Yeah?
2: Don't forget flu vaccine today.
3: Really?
2: Yeah, online consent form signed ages ago. It helps stop you getting really poorly with flu or passing it on to your baby brother.
4: If you have a child in reception to year 11, help protect them with the flu nasal spray vaccine. Your child's consent form could arrive by email, text, through your school app or in their bag. Look out for it and complete it. Stay strong. Get vaccinated. Find out more at nhs.uk/child-flu.
5: This is Like a Gold.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: Travel Hub, best service with unbeatable price.
8: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
9: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी.
10: सामने काम कर मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए.
11: नाकता चाहिए इतना.
9: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी. प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख. डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक.
12: गांडो छे आगे वालों ब्रेक मारे तो पाछड़ वालों ब्रेक मारे ने यार तारी मारी
9: दोस्ती. स्टारिंग विराज खिलानी, दीप वैद्य, विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी. मित्रता इन सिनेमाज नाउ. यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया.
13: सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा.
14: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम.
13: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
14: रात 8 बजे से देर रात तक. टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट. 5 साल से छोटे बच्चे फ्री.
13: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए. टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
14: 07956458872.
13: तो मिलते हैं गरबा में.
15: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
16: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
15: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
16: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
15: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
17: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
18: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
19: ये तो बताओ, कोई पता चला?
18: गुरु गुरु,
20: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
21: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
20: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
22: टू बुक कॉल 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
23: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
24: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
25: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
26: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
0: माने दिलदारा।
1: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
2: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.

कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा. ब्यूटिफुली सांग बाय किशोर कुमार साहब, म्यूजिक गिवन बाय हिम इज वेल फॉर द फिल्म झुमरू, एंड इट वॉज इनएक्टेड बाय हिम अलॉन्ग विथ मधुबाला जी, सॉरी अबाउट द वॉइस. फिल्म का नाम लाइक आई सेड इज झुमरू. मजरू सुल्तानपुरी की खूबसूरत लेखकी इसमें, एंड ऑफकोर्स शंकर मुखर्जी का डायरेक्शन था इस फिल्म में. आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग, इट इज वन ऑफ माई प्योर फेवरेट्स. ऐसे ही कुछ और गाने आने वाले हैं, आप सुनते रहिए विंटेज गोल्ड. ये है लाइका.

0: खतरों के खिलाड़ी every Saturday and Sunday at 7:30 PM on Colors and watch it anytime on Jio Hotstar.
1: SonaTours.co.uk 13 days Vietnam and Cambodia departures every month September to December. Get 100 off if you book this month. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
2: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए Minar Jewelers पर 181 Upper Tooting Road या विजिट कीजिए MinarJewelers.com. Call 0208-767-7627.
3: LYCA. This is Leica.

0: कैन दिस सॉन्ग एवर गेट ओल्ड, ये 1956 की एक फिल्म थी चोरी चोरी, उसे मन्ना दे एंड लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ें थी इसमें। हसरत जयपुरी साहब की कलम का जादू एंड म्यूज़िक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन। और उससे पहले जो आपने गाना सुना रफ़ी साहब की आवाज़ में, दैट वाज म्यूज़िक डायरेक्टेड बाय रवि साहब एंड दिस इज़ फ्रॉम द फिल्म आज और कल। इसके साथ आ चुके हैं हम अपने सेकेंड आवर में। कैन यू इमेजिन दैट, दिस इज़ बिन द सेकेंड आवर ऑफ विंटेज गोल्ड। सो वी बिन लिसनिंग टू लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स, वी बिन वेरी बिजी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली मैसेजेस, दैट्स केप्ट मी बिजी एज वेल इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू दैम। बट द फैक्ट दैट यू टेक द पेन्स, आप मैसेज हमें करते हैं, आपकी इनकरेजमेंट एंड योर थॉटफुलनेस इज ऑलवेज मच अप्रिशिएटेड। सो थैंक यू एंड कीप देम कमिंग। फॉर दोज हुव जॉइंड अस रिसेंटली और आर न्यू टू विंटेज गोल्ड, दिस इज द शो found only in on Laika Gold across UK airwaves. I can assure you it's not available anywhere else, where we play the choicest music from the 40s, 50s and 60s and some from the 30s that you'll see in this hour. And 7 se 10 baje normally it's Sandy Shah on the hot seat, but I am covering for him today or this weekend rather. Sandy Shah will be back with the drive time tomorrow onwards and then back on Vintage Gold for the weekend. He's a busy man. So, look out for him. He'll definitely be there. And गानों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। वी आर ऑल्सो पेइंग आर ट्रिब्यूट टू महेंद्र कपूर साहब, हु पास्ड अवे ऑन दिस डे इन 2008 एट द एज ऑफ 74 इन मुंबई। महेंद्र कपूर साहब ने बहुत बहुत बेहतरीन गाने गाए हैं, बहुत बुलंद आवाज़ है उनकी, लेकिन उनका ये जो गाना है विच इज़ कमिंग अप नेक्स्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड आई होप यू लाइक इट टू। सुनते रहिए विंटेज गोल्ड, माई नेम इज सुप्रतिम।
1: WhatsApp message Laika Gold now on 0744 23 23 23. This is the Laika Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: थैंक यू टू डेरी वैली फॉर दैट फील गुड सॉन्ग. फिल्म का नाम था पतंगा एंड आवाज़ें थी इश्तादा बहार शमशाद अलॉन्ग विद रफ़ी साहब. इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे सी रामचंद्र. कुछ मैसेजेस लेकिन उसके बाद सोचिए रफ़ी साहब की आवाज़ 20 साल बाद कैसी थी. नॉट द फिल्म बट 20 साल बाद कैसी थी. टोटली डिफरेंट रफ़ी साहब कमिंग अप राइट आफ्टर दीज मैसेजेस. Well, if you haven't caught up on this, you should. The brand new game show, India Ke Top 1%, hosted by the none other than Anil Kapoor, every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar. Download and subscribe Jio Hotstar app now, or you can download the Sky TV app, and Jio Hotstar is part of that.
3: Ye hai Laika Gold.
0: Vintage Gold with Sandy Shah on Leica Gold, Greater London.

0: एब्सोल्युटली सबलाइम. रफ़ी साहब लता जी के साथ, फिल्म का नाम शागिर्द, 1967 की एक खूबसूरत फिल्म थी ये. इनफैक्ट इट वॉज क्वाइट फनी एज वेल. कुछ मैसेजेस, लेकिन उस मैसेजेस के बीच में इट विल बी अगेन रफ़ी साहब एक नए अवतार में. सुनते रहिए विंटेज गोल्ड. मेरा नाम है सुप्रतिम, सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह.
1: ये है लाइका गोल्ड.
2: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ओल्ड ट्रैवल.
0: Do you know Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai? Contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is atoll protected.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
3: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. Like a Gold and Like a Radio Midlands.

0: What a wonderful song. मैंने थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले लिया था, ये 1971 की फिल्म है अनुभव. वी नॉर्मली डोंट प्ले 70s सॉन्ग्स, बट दिस इज सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग बाय गीता दत्त जी. इनफैक्ट इट वॉज वन ऑफ द लास्ट सॉन्ग्स शी सैंग बिफोर शी पास्ड अवे. तनुजा एंड अ वेरी यंग संजीव कुमार थे इसमें, अनुभव 1971 की एक फिल्म. एंड कानू रॉय वॉज द म्यूजिक डायरेक्टर, गुलजार साहब के बेहतरीन लिरिक्स. आई होप यू एंजॉयड इट. आई एब्सोल्युटली लव इट एवरी टाइम आई लिसन टू इट. इट रियली मेक्स यू फील वेरी वेरी हैप्पी. कुछ मैसेजेस और उसके बाद आ रही हैं सुरैया की सुरीली आवाज.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: £1 can get you 126.92 Indian rupees, 85.87 Afghan Afghani, 367.06 Pakistani rupees, 163.04 Bangladeshi taka, 437.21 Sri Lankan rupees and 1.32 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold rate for today is £104.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica Radio Network, broadcasting across Greater London.

0: संडे हो और ये गाना ना बजे, ऐसा कैसे हो सकता है? फर्स्टली माय अपोलॉजीज, मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि न्यूज़ आने वाला है, विच इज़ नॉट द केस. आई वॉज 10 मिनट्स टू अर्ली, सॉरी अबाउट दैट. अलग टाइम जोन पे चल रहा हूँ मैं शायद आज, लेकिन आई होप यू इन्जॉय दी सॉन्ग्स. ये सी रामचंद्रन की खुद की आवाज़ थी, शमशाद बेगम एंड मीना कपूर के साथ, एंड द म्यूज़िक वॉज ऑल्सो गिवन बाई सी रामचंद्रन साहब. शहनाई फिल्म का नाम, 1947 की एक काफ़ी मज़ेदार फिल्म. इसके साथ ही हम अपने सेकेंड आवर के एंड की तरफ आने लगे हैं, विच इज़ क्वाइट सरील, राइट? लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत गाना सरगम फिल्म से है, जो 1950 की एक अच्छी फिल्म थी. रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी एंड सी रामचंद्रन अगेन. तो वो गाना आपको एंटरटेन करेगा एंड इट विल टेक यू टुवर्ड्स द न्यूज़, एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द न्यूज़. ऑल्सो टू रिमाइंड यू, वी आर पेइंग ट्रिब्यूट टू महेंद्र कपूर साहब. टुडे इज़ हिज डेथ एनिवर्सरी, सो इन द थर्ड आवर देर विल बी अनदर ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम हिम. सो सुनते रहिए विंटेज गोल्ड, कहीं मत जाइए. मेरा नाम है सुप्रतिम, आई एम विथ यू अंटिल 10 o'clock.
1: Forgotten memories refreshed like a gold.
2: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो. अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी. मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया. लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
3: बोल दो बापू.
2: बोल दे बेटा.
4: बाप भला ना भैया, भैया सबसे भला रुपया. बाप भला ना भैया, भैया सब...

0: बापू ए बापू,
1: अरे की है बरखुरदार।
0: कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूं हूं लाचार।
2: की है बोल भी।
0: ओ खेतों के उस पार, ओ खेतों के उस पार रहती है गोरी गोरी गरीब किसान की छोरी। मुझे है इससे प्यार बापू, मुझे है इससे प्यार।
1: हाय की कहे की कहे, प्यार की होए आए प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने।
3: बोल दो बापू।
1: बोल दे बेटा।

0: झूठी है सब प्रीत मोहब्बत दुनिया में सच्ची है दौलत।
1: हमरी जीवन नैया को बस पैसो पार लगैया भैया पैसो पार लगैया। हमरी जीवन नैया को बस पैसो पार लगैया भैया सबसे भला रुपैया।
2: बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपैया। बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपैया।
3: ठीक है बापू मैं जाता हूँ, आप तो जाने मैं बेकसूर हूँ लेकिन मजबूर हूँ।
4: अरे कठे जाए कठे जाए, मेरी बात भी तो सुने।
1: तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी है एक राजकुमारी। जा घोड़ा ले आ कर जाने की तैयारी कर जाने की तैयारी।
5: हीरे की हथली दऊंगो मोती को हार दऊंगो लेकिन बदले में राजा से एक एक के हजार लूंगो।
6: क्या शादी भी है व्यापार?
5: हाँ बेटा एक एक के बड़े हजार। ई कल मुही को सोड़ तू प्यार से मुंह मोड़।
6: अरे पैसे से नाता जोड़।
3: ठीक है बापू मानता हूँ मैं आपकी बात, लाइए वो जेवरात।
5: ले ले बढ़ा दो हाथ।
4: ए घोड़ा लाओ घोड़ा।

0: ठीक है, अरे ठीक है, मारी सारी उम्र की कमाई गई डॉलर है।
1: बोल दो बापू।
2: हाँ बोल दे बेटा।

0: और अ लवली सॉन्ग जादूगर सैया फ्रॉम द फिल्म नागिन 1954 की फिल्म थी ये. लता मंगेशकर जी की खूबसूरत आवाज़, हेमंत कुमार मुखर्जी की म्यूजिक डायरेक्शन थी इसमें, वैजंत माला बाली एंड प्रदीप कुमार बैनर्जी व द स्टार कास्ट, राजेंद्र किशन की ब्यूटीफुल लिरिक्स एज ऑलवेज. आई होप यू एंजॉय दिस वन. और उससे पहले जो गाना आपने सुना दैट वॉज तुमसे अच्छा कौन है, दैट वॉज फ्रॉम द फिल्म जानवर 1965, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ और शम्मी कपूर एंड राजेश श्रीवदी लीड एक्टर्स फॉर दिस फिल्म. शैलेंद्र एंड हसरत जयपुरी दोनों ने मिलकर ये गाना लिखा था, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड शंकर जयकिशन का म्यूजिक था. आई होप यू एंजॉय दैट वन एज वेल. वेल, वेलकम बैक टू द थर्ड आवर ऑफ विंटेज गोल्ड. मेरा नाम है सुप्रतिम, आई एम सिटिंग इन फॉर द लेजेंडरी सैंडी शाह, हु विल बी बैक बाय द वे फॉर टुमारो ऑनवर्ड्स फॉर ड्राइव टाइम एंड देन बैक ऑन द हॉट सीट फॉर विंटेज गोल्ड नेक्स्ट वीकेंड. सो यू हैव लॉट ऑफ हिम नेक्स्ट वीक इन केस यू वर मिसिंग हिम, एंड आई एम श्योर मेनी वर बिकॉज आई गॉट लॉट्स ऑफ मैसेजेस asking about his whereabouts. So thank you for your messages, thank you for being so engaged as listeners, and thank you to the new listeners who've, or not new rather, but new people who've messaged us for the first time and have been listening to this show quietly. So don't do it quietly, just tell your friends about it. It's a wonderful, wonderful show, and you can always listen back on our app or on the website. It's so simple. एनीवे, सो अब गानों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा. मैं आपके साथ हूँ 10 बजे तक. वी आर ऑल्सो पेइंग ट्रिब्यूट टू मोहम्मद महेंद्र कपूर साहब ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी. ही पास्ड अवे ऑन दिस डे इन 2008 एट द एज ऑफ 74 इन मुंबई. And every hour we've been playing one of rare songs from him, and this one is a truly rare song, so do look out for it. Sunte rahiye Vintage Gold. Mera naam hai Supratim. I'm with you until 10 o'clock tonight.
1: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23.

0: protects UK homes from over 10 million online threats every month, keeping you and your family safe from scammers. Advanced threat protection as standard, only from the UK's best broadband. BT, protecting brilliant things. Based on BT full fibre. Verify at bt.com/claims.
1: Yeah, like a gold.
2: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 p.m. on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
2: साउथ हॉल ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
6: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा Holidays. What's your travel mantra?
7: Search is changing.
8: Customers aren't just using Google anymore.
7: They're asking AI.
8: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
7: One business, one recommendation.
8: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
7: Will your business be the answer?
8: Or the one that got left behind?
7: The future of search has already started.
8: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
7: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: हमारी रक्षक है वो
10: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
11: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है कौन कर रहा है
10: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
12: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
14: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new properties Dubai has something for everyone with its ambition 1111 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months featuring views oases oceans elites fashions and sports there's an opportunity waiting for you so why wait be part of Dubai's growth story call the Danube Properties Dubai London office today on 02039635757 to arrange your meeting
1: Like a Gold London ka number one Asian retro music station ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe Feel good track Brought to you by Derry Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: इसके साथ मेरे भी जाने का टाइम आ गया, लेकिन जाने से पहले मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ रफ़ी साहब की खूबसूरत आवाज़, थोड़ी नटखटी, इट्स अ सॉन्ग आरजू फिल्म से 1965 की है, लेकिन गानों का सिलसिला एज यू नो यहाँ चलता रहता है इन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड नाइट्स, एंड टुमारो मॉर्निंग काजल विल बी देयर एट 6 o'clock विद गोल्ड ब्रेकफास्ट, एंड ऑफ कोर्स सैंडी शाह इज़ बैक ऑन ड्राइव टाइम. So, मुलाकात होगी आपसे फिर. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस एंड फॉर कीपिंग इन टच एंड फॉर लिसनिंग इन. सुनते रहिए लाइक अ गोल्ड, म्यूजिक नेवर स्टॉप्स. गुड नाइट.
1: ये है लाइक अ गोल्ड.

0: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
1: ये तो बताओ, कोई पता चला?
2: गुरु गुरु,
3: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
1: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
4: शीघ्र शीघ्र।
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November।
5: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Online at Eventbrite.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Southall Travel.
8: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
7: Southall Travel can take you there.
9: Southall Travel, at all protected.
10: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danube 11.
12: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
13: Dubai is the place.
11: 11, 11.
12: Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
11: Danube 11, 11. Danube Properties.
14: तेरा क्या होगा रे कालिया?
15: सरदार, मैंने पूनम के लड्डू खाए हैं।
14: सारे लड्डू खा गया, एक नहीं छोड़ा। क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक शादी हो या त्योहार, लोग कहते हैं लड्डू हो तो बस पूनम के हो।
16: जब पूनम की स्वीट्स मंगवाली तो हो गई अपनी हैप्पी दिवाली।
17: पूनम स्वीट सेंटर, 86 वेस्टर्न रोड, साउथ हॉल। कॉल 0208-574-4934। Delivery bhi available hai Uber Eats par.
18: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
19: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
18: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
19: Call us today on 0208-706-0915. That's 0208-706-0915. Or visit Cashback Remortgages. mortgage.co.uk.
18: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
20: This is Leica.

कई खूबियों वाली तिरछी तिरछी तिरछी तिरछी नजरों वाली ओ गौरी गौरी गौरी ओ गौरी हक काली है जो जहां के वाली मिल जाए तो फिर बस मिल जाए तो फिर एक एक एक एक साइकिल प्याली एक एक एक एक साइकिल प्याली।

0: नाजों की वपाली तिरछी तिरछी तिरछी तिरछी नजरों वाली वो गोरी गोरी गोरी वो गोरी हाथ के काली जो जहां से वाली मिल जाए तो फिर वक्त मिल जाए तो फिर
1: ये है लाइका गोल्ड। This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS. For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: Function rakha hua hai.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
4: Have you had a bereavement in the family? In times of

0: This is Like a Gold. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar. One performer.
1: Countless personalities.
0: A whole universe of entertainment.
1: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
0: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
1: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
1: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585-801. 801 official radio partner Leica Radio Network.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
3: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान. देखिए दुबई की शान. फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 8574-8410.
0: साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
5: Winter's coming and

0: Like a gold.
1: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: Banana ना फंक्शन रखा हुआ है।
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
4: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place. 11, 11.
5: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
7: Danu 11, 11. Danu Properties. 11, 11.
8: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।